नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के 29वें तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:59 और 19 सेकंड हो चुके हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दिलवाते हैं कृषि संबंधी खेती की बातें कार्यक्रम के तहत।
3: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, देश की बढ़ती जनसंख्या की खाद्य समस्या को हल करने के लिए सघन खेती की आवश्यकता है। अब एक ही खेत से एक वर्ष में कई फसल ली जाती है। इसके लिए उन्नत बीज, खाद तथा पानी की समुचित व्यवस्था के साथ साथ कृषि कार्य जैसे भूमि की तैयारी, बीजों की बुआई, फसलों की सिंचाई, कटाई और भंडारण वगैरह कार्य समय पर न होने से फसल के उत्पादन में काफी कमी हो जाती है। आज के समय में किसान भी कृषि यंत्रों के उपयोग के महत्व को समझने लगे हैं और अधिक से अधिक यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण कृषि कार्य कम लागत में समय पर निपटाए जा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से कई ऐसे कृषि यंत्र के विकास किए गए हैं जिससे खेती का कार्य सुगम हुआ है। किसान भाइयों, खेतों की तैयारी के लिए मुख्य कृषि यंत्र मिट्टी पलटने वाला हल एमबी प्लाऊ है। यह पूर्णतः लोहे का बना होता है। इसमें नीचे लगा फॉल मिट्टी को काटता है और फॉल से लगा हुआ लोहे के मुड़ी हुई प्लेट से मिट्टी पलटती जाती है। यह एक प्रकार से जुताई के दौरान एल आकार का कुंड बनाता है, जिसे दो कुंड के बीच जगह नहीं छूटती है। यह यंत्र अनेक मापों और आकार में भूमि के प्रकार, पशु शक्ति के अनुसार कटाई करता है। यह यंत्र गहरी जुताई के लिए भी बहुत उपयोगी है। किसान भाइयों, तवेदार हल जिसे हम डिस्क प्लाऊ कहते हैं, इस हल द्वारा घास और जड़ों से भरी हुई जमीन की जुताई करने में आसानी होती है। तवों के कारण यह इन अवरोधकों को काटता हुआ चलता है। चिकनी नमीयुक्त मिट्टी में भी यह आसानी से प्रयोग में लाया जाता है। तवों में लगे हुए स्क्रैपर की वजह से गीली मिट्टी इसमें चिपक नहीं पाती है। किसान भाइयों, अब बातें कल्टीवेटर की। इस यंत्र का प्रयोग जुताई के बाद खेतों में ढेलों को तोड़ने, मिट्टी भुरभुरी करने और खेत में सूखी घास जड़ों को ऊपर लाने के लिए करते हैं। इस यंत्र का प्रयोग कतारयुक्त फसलों में निराई हेतु भी किया जाता है। किसान भाइयों, जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरी और नमी सुरक्षित रखने के लिए उथली जुताई की आवश्यकता होती है। इसके लिए हैरो यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। यह उपकरण अत्यंत उपयोगी है। घास फूस जड़ों वगैरह को भी खेत से साफ करने में

0: यह यंत्र काफी उपयोगी होता है। इस यंत्र के दो प्रकार हैं, तवेदार हैरो और ब्लेड हैरो। ग्रामीण बंधु अब बातें पडलर की। इस यंत्र द्वारा जुताई के बाद खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरकर मचाई कार्य किया जाता है, जो कि धान के पौधों की रोपाई हेतु उपयुक्त परिस्थिति बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण भाइयों, अब हम बातें करेंगे रोटावेटर यंत्र की। यह एक विशेष प्रकार का ट्रैक्टर से चलने वाला भारी और बड़ा यंत्र होता है। इस यंत्र में विशेष तरह के कई ब्लेड लगे होते हैं, जो मिट्टी को काटकर ऊपर उठाकर और पलटते हुए आगे चलते आते हैं, जिससे मिट्टी की जुताई और भुरभुरी एक साथ हो जाती है। इस यंत्र के प्रयोग के पश्चात खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, पशुचालित बीज उर्वरक बुआई यंत्र की अपनी अलग विशेषता है। इस यंत्र के द्वारा 3 से 4 कतारों में एक साथ बुआई की जा सकती है। कतारों के मध्य की दूरी को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। इस यंत्र के द्वारा खाद और बीज दोनों ही निर्धारित मात्रा में आवश्यकता अनुसार खेतों में गिराए जा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, ट्रैक्टर चालित बीज और उर्वरक बुआई यंत्र के द्वारा 7 से 13 कतारों में बुआई की जा सकती है। इस यंत्र के प्रयोग से बीज और खाद भूमि में उचित गहराई पर बोए जा सकते हैं। यह ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंक के साथ जुड़ा होता है, जिसे लाने ले आने तथा खेत में चलाने के लिए बहुत सुविधाजनक होता है। किसान भाइयों, प्लांटर बीजों की बुआई का एक मुख्य यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग बीजों को प्राय एक निश्चित दूरी पर पंक्तियों में बुआई हेतु किया जाता है। इसमें अलग अलग फसल के बीजों के लिए अलग अलग प्लेटों तथा स्प्रे किटों का प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, ट्रैक्टर चालित रेस्ड बेड सीड्रिल द्वारा क्रमबद्ध रेस्ड बेड और फरों का निर्माण किया जाता है। अधिक वर्षा की स्थिति में अतिरिक्त वर्षा जल को सुगमता पूर्वक खेत से निकालने में यह पद्धति अति उपयोगी है। इस विधि से बुआई करने से फसल में वायु का संचार अच्छा होने के कारण फसल की बढ़वार और उत्पादकता अधिक होती है। साथ ही इस विधि द्वारा मृदा नमी का संरक्षण भी होता है। उर्वरक के सही व्यवस्थापन के कारण उर्वरक उपयोग क्षमता भी बढ़ती है। किसान भाइयों, आज बातें हम कर रहे थे मुख्य कृषि यंत्रों की, जिसके दम पर हम खरीफ फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम से अब मैं दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

सफलता की कुंजी है कड़ी मेहनत। कोई भी महान काम एक ही दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है, इसे करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है और जब तक सफलता ना मिले तब तक थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम छोटे छोटे प्रयास करके बड़े काम को कर सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखना, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, सकारात्मक सोच का होना, यह सफलता की ओर हमें ले जाता है। कई बार हम असफलता से निराश हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। असफलता मिलने के बाद हमें उससे सीखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है और पुनः नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते रहने से एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपार सफलताएं पाई, लेकिन जब हम उनके अंदर झांकते हैं, उनके जीवन की ओर झांकते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने कठिन संघर्ष किया, तब जाकर उन्हें सफलता मिली। कहने का तात्पर्य है कि सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जबकि आज के दौर में लोग बहुत ही छोटा रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो प्रयास करने से डरते हैं और छोटा रास्ता अपनाकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाना चाहते हैं, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि इससे थोड़ी पल के लिए आप किसी कार्य में सफल हो जाएं, लेकिन आपके जीवन में ठहराव नहीं आ पाएगा, वो ऊंचाई आपको नहीं मिल पाएगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आपको तपना तो पड़ेगा, क्योंकि सोना जब तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसलिए जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, कठिनाइयां नहीं होंगी, आप उसका स्वाद नहीं चख पाएंगे। सफलता का स्वाद

तभी मिलेगा जब आप तपेंगे, संघर्ष के दौर से गुजरेंगे, तब जाकर आपको महसूस होगा कि सफलता कितनी अच्छी चीज है। इसलिए हमेशा प्रयासरत रहें, कभी भी निराश ना हो, आशा का दामन ना छोड़ें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सफलता की कुंजी है कठिन मेहनत, संघर्ष, और यदि हमारे जीवन में ऐसा है तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि हम ठान लें कि हमें यह काम करना है तो हम उस काम को अवश्य ही कर लेंगे, क्योंकि हम देखते हैं, पाते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो चाहते थे वहाँ तक पहुँच जाना, इसलिए वो पहुँचे। और ऐसा नहीं कि आसानी से पहुंच गए, बार बार गिरे, लेकिन प्रयास किया और प्रयास करते हुए वो वहां पहुंच गए। एक छोटी सी चींटी के बारे में ही देख लीजिए कि वह बार बार प्रयास करती है, असफल होती है, गिरती है, लेकिन उसके बाद भी वह संघर्ष करना नहीं छोड़ती और अंततः वह उस ऊंचाई को, उस मंजिल को प्राप्त कर लेती है जो वह पाना चाहती है। इसलिए हमें यदि जीवन में सफलता चाहिए तो फिर मेहनत से, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए निरंतर प्रयास करिए, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी।

सफलता की कुंजी आत्मविश्वास। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख और वाचन स्वर था निर्मला तिवारी का। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का, तो आइए भक्ति संगीत के सागर में कुछ पल हम गोते लगाएं। सुनवा रहे हैं आपको तृप्ति शाक्या और साथियों के स्वरों में कुछ भजन।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में तृप्ति शाक्या और साथियों को, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं शिवजी के कुछ भजन।

0: शिव जी के इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी डाल्टनगंज है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको जानकारी दिलवाएं अस्थमा बीमारी के बारे में, अस्थमा कारण और उपचार। डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय से ली गई भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं आपको। पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता है, आकाशवाणी रांची केंद्र के सौजन्य से प्राप्त है।
1: बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में अस्थमा हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बातचीत करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे, कोविड के बाद उनके अस्थमा के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
1: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम अपने आप को बचाव किस प्रकार करें?
2: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूँ कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं ना थी।
1: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
2: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है

0: जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।
1: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
0: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए, जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है, कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
1: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
0: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, कई तरह के मूंगफली, बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफ़ी शौकीन हैं और दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं, ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
1: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेने पड़ेगी, तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
0: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर से डरे नहीं, इन्हेलर केवल एक दवा पहुँचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है, तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदी होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपके इन्हेलर हट सकती या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर नाम से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा हो तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए, और एक इन्हेलर खत्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आज कल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्या कारण डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हंसता रहता है, हाँफता रहता है, छींकता रहता है।
0: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण, कुछ भी बोलिए, वायु प्रदूषण है। तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था, आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है, कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है। तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी।

0: कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखेगी।
1: घर का बना हुआ खाना ही खाइए। यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ। आज आपने अस्थमा पर बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज के दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। कल एक फिर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे अस्थमा बीमारी के बारे में डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय से ली गई जानकारी। अस्थमा क्यों होता है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मालदोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने

अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम पलाश के तहत कुछ लोकगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत आप सुन पाएंगे जगजीत सिंह को 7:45 पर। 8 बजे हम शामिल होंगे समाचारों के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में, जहां से आप सुनेंगे हिंदी समाचार समाचार प्रभात, अंग्रेजी समाचार मॉर्निंग न्यूज़, और 8:30 आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर हम अपने स्टूडियो से आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन के तहत कुछ फिल्मी गाने। जोहार पलामू हमारा ये विशेष कार्यक्रम 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के आज आप 1331वीं कड़ी सुनेंगे 9:30। 10 बजे हिंदी समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

10:10 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र में विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए। शाम 5:29 तक आप विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लेते रहेंगे और शाम 5:30 पर हम अपने स्टूडियो से आपको जानकारी देंगे कार्यक्रमों की एक बार फिर से।

शाम 5:35 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन के तहत चर्चा की जाएगी। घर और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारियों पर महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, इस पर भी चर्चा होगी। स्वाति सहाय की पूर्व प्रसारित वार्ता सुनेंगे आप। स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। शाम 6:02 से खेती बारी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर और सोयाबीन की खेती में कीट प्रबंधन पर। सुषमा श्रीवास्तव की वार्ता सुनेंगे आप। प्राकृतिक खेती पूर्व प्रसारित यह वार्ता होगी। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा शाम 6:30 से। चर्चा की जाएगी इस कार्यक्रम में पशुओं के लिए आहार व्यवस्था पर। आज की बात होगी अंतर्वर्ती खेती के लाभ पर और अनिरुद्ध महतो भोंगा पाटन पलामू के एक किसान से ली गई भेंटवार्ता भी आप सुनेंगे। इसी कार्यक्रम में बातचीत करेंगे संतोष कुमार। आज की नसीहत होगी मृदा में पर्याप्त नमी जरूरी, इस पर और मौसम विभाग से प्राप्त मौसम की जानकारी। पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव भी आप जानेंगे इसी कार्यक्रम में। शाम 6:55 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र में। 7:00 सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 पर। 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद कल्याणी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शाम 7:45 पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, बातचीत करेंगे संजय कुमार लाल। 8:00 शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में। 8:15 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से के तहत सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने।

9 बजे अंग्रेजी समाचार, 8:45 पर हिंदी समाचार, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 9 बजे अंग्रेजी समाचार, 9:15 पर उर्दू समाचार, 9:30 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे आप विविध भारती के तहत आज के फनकार, 10 बजे हम आपको फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा के तहत सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने, 11 बजे पुनः शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में और 11:10 पर करेंगे सभा समापन। तो ऐसी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है लोकगीतों के कार्यक्रम पलाश के तहत कुछ लोकगीत।

कहा जे डमक चेरे दादा के मारे वादया दादा के मारे वादया।

0: अब सुनिए विरह रस का गीत राग जनानी झूमर में। कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा सज धज कर अपने प्रियतम का इंतजार करती है, परंतु जब कृष्ण नहीं आते हैं तो वो बेचैन होकर अपने श्रृंगार को तोड़ देना चाहती है। स्वर है जानकी देवी और साथियों का।
1: लाली लाली तारंगे, लाली लाली तारंगे, कुसुमिता सारी भाई बसिया के ललकारी, बसिए सब दह दे

0: लोक गीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है नागपुरी लोक गीत, स्वर है जानकी देवी और साथियों का। पहले गीत में किस्म किस्म के फूलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, गेंदा, गुलाब, कचनार, जूही, बेली, कमल, केवड़ा, कनैली जैसे फूलों को देख कवि का मन आनंदित है। राग दोहरी डमकच के इस गीत को सुनिए जानकी देवी और साथियों के स्वर में।
1: धाधा की धावैया फूले, धाधा की धावैया फूले, फूल लपारा सहो, धाधा की धावैया फूले।

0: जानकी देवी और साथियों के स्वर में ही अब सुनिए एक हरिया डमकच राग पर आधारित लोकगीत। इस गीत में कवि कह रहा है, माघ महीने के आंधी तूफान और बर्फबारी ने बसंत के आगमन का संकेत दे दिया है। खिले खिले फूल, सुगंधित बयार और कोयल की कूक वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं।
1: या गेलक आंधी धुका, आ गेलक पथल पानी, आ गेलक आंधी धुका, आ गेलक

अभी आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत। इसी के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरता के तहत आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को। इसी के साथ ही सुगम संगीत का स्वर सरता कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। बस कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: जारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
4: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
5: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
4: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टानें खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है।

0: हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
1: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 1798 मीट्रिक टन अवैध कोयला किया जब्त। जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत की गई कार्रवाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र बीएलओ को जमा करने की अपील की। कहा, 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर होगा चुनाव पाठशाला का आयोजन। संताली फिल्म आंगिन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म निर्देशक का मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिल्म के निर्देशक रवि राज मुर्मू को दी बधाई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का जताया अनुमान। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की है संभावना। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित वुशु हॉल में रांची जिला सीनियर वुशु चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। विभिन्न क्लबों और विश्वविद्यालयों के करीब 60 खिलाड़ियों ने लिया भाग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर पिछले 3 सप्ताह में लगभग 1,08,00,000 रुपये मूल्य का 1,798 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया है। सीआईएसएफ ने बताया कि ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत आधुनिक तकनीक, खुफिया सूचना और बढ़ी हुई वैधानिक शक्तियों के उपयोग से की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र बीएलओ को जमा करें, ताकि डिजिटाइजेशन और एएसटीडी सूची का कार्य समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 97.8% मतदाताओं तक घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं तथा प्राप्त फॉर्मों में से 67% का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलओ 2 की तीसरी बैठक एवं चुनाव पाठशाला आयोजित होगी, जबकि शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं की सुविधा के लिए आज विशेष कैंप लगाए जाएंगे। रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शहरी मतदाताओं की सुविधा के लिए आज सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अधिक जानकारी हमारी संवाददाता से।
1: रांची जिले के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां मतदाता अपने एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर उन्हें भरकर जमा कर सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी शहरी मतदाताओं से शिविर का लाभ उठाकर समय पर फॉर्म जमा करने की अपील की है। जिले में अब तक 91% से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण तथा 54% से अधिक फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। तमाड़, सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100% फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन ने 100% फॉर्म वितरण, संग्रहण और समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: झारखंड में हो रहे जनगणना कार्य को देखते हुए सरकार ने इस कार्य से जुड़े अधिकारियों का तबादला 31 मार्च 2027 तक नहीं करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश के अनुसार ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संताली फिल्म आंगेन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिल्म के निर्देशक रवि राजमुर्मू को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे झारखंड और संताली समुदाय के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि आंगेन ने संताली भाषा, संस्कृति और झारखंड की रचनात्मक प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर की गई नई पहचान दिलाई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में झारखंड को 17 बड़े राज्यों में 16वां और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 25वां स्थान मिला है। रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधनों और बेहतर वित्तीय स्थिति को राज्य की प्रमुख ताकत बताया गया है, जबकि कारोबारी माहौल और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कमी को बड़ी चुनौती माना गया है। नीति आयोग ने कहा है कि झारखंड को निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगों को शीघ्र मंजूरी, पारदर्शी नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेशक अनुकूल वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है। चतरा के इटखोरी प्रखंड बाजार में 12 जुलाई को ज्वेलरी व्यवसायी दिलीप सोनी की बाइक की डिक्की से करीब 60 लाख रुपए मूल्य के जेवरात चोरी मामले में पुलिस ने उड़ीसा के जाखापुर थाना क्षेत्र के दशमनिया गांव निवासी दीपक प्रधान को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेतानी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरोह के सदस्य को हैदराबाद में अपराध करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था।
3: आरोपी है, उनके पास से 2 हाई स्पीड मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स और चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है और पूरे गांव में काफी युवा इस काम में शामिल रहते थे। ठेकी करने वाला ग्रुप अलग रहता था और साथ ही झपट्टा मार करके डिग्गी तोड़ने का भी ग्रुप अलग रहता था, जिनको समय समय पर हैदराबाद में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि कैसे लॉक खोले जाते।
0: सरायकेला जिले आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया स्थित बोलाईडी बस्ती में हुए जगन्नाथ गोप उर्फ काड़ा हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्यगायारी ने प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी।
4: एसआईटी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एविडेंसेस और विटनेसेस साबित हम लोगों ने 4 अभियुक्त शिव प्रमाणिक, संजय नायक, प्रेम नायक और गणेश नायक को गिरफ्तार किया। उन लोगों के खिलाफ में हम लोगों को एविडेंस मिला है, सीसीटीवी फुटेज और उनके निशानदेही पे हम लोगों ने जो हत्या में प्रयोग किए हुए 2 रड उसको हम लोग बरामद किया है।
0: मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल

भारी बारिश का अनुमान जताया है। कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित वुशु हॉल में रांची जिला सीनियर वुशु चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्लबों और विश्वविद्यालयों के करीब 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर विभिन्न वर्गों के विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने फीफा विश्व कप फुटबॉल फाइनल मुकाबले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। शीर्षक है, स्पेन विश्व चैंपियन, स्पेन की दीवार को नहीं भेज सकी मेसी की अर्जेंटीना। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, राज्य में हर बीमारी की अब बनेगी प्रोफाइल। दैनिक जागरण ने आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र को पहले पन्ने पर जगह दी है। शीर्षक है, मॉनसून सत्र में हावी रहेंगे चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक और इथेनॉल के मुद्दे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 1,798 मीट्रिक टन अवैध कोयला किया जब्त। जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत की गई कार्रवाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र बीएलओ को जमा करने की अपील की। कहा, 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर होगा चुनाव पाठशाला का आयोजन। संताली फिल्म आंगेन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म निर्देशक का मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिल्म के निर्देशक रवि राज मुर्मू को दी बधाई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का जताया अनुमान। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की है संभावना। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित वुशु हॉल में रांची जिला सीनियर वुशु चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। विभिन्न क्लबों और विश्वविद्यालयों के करीब 60 खिलाड़ियों ने लिया भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आपके साथ है आपका दोस्त विनोद। बने रहे हमारे साथ, हमारे कार्यक्रमों के साथ।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इतना समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का। आप तमाम साथियों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त निर्मला का नमस्कार। दोस्तों, आज हमने गीतों की महफिल सजाई है ऐसे गानों से जिसमें प्रेम है, मनोहार है और ये गीत हमेशा सदाबहार हैं।

हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी के गाने को स्वर दे रही थी गीता दत्त। फिल्म थी साहेब, बेवी और गुलाम। आइए सुनवाते हैं अगला गाना।

हम उन्हें याद कर रहे हैं। अभी आपने सुना झुक गया आसमान फिल्म का गाना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीत के बोल हसरत जयपुरी के थे और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और आज है नसीरुद्दीन शाह जी का जन्मदिन भी, उन्हें भी हम बहुत बधाई दे रहे हैं उनके जन्मदिन की, उज्जवल भविष्य की और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। चलिए अब सुनवाते हैं चलते चलते गीता दत्त का गाया हुआ यह खूबसूरत गाना।

कानू रॉय के संगीत निर्देशन में कपिल कुमार के लिखे गाने को स्वर दे रही थी गीता दत्त। फिल्म थी अनुभव। और इसी के साथ ही अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: हम आकाशवाणी की डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप तमाम साथियों का हमारे इस कार्यक्रम में। इंसान शरीर से नहीं बल्कि अपनी सोच और मानसिकता से विकलांग होता है। ये सुविचार ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस के प्रतीक महिला के हैं जिन्होंने लोगों को यह बताया कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। उन्होंने लौह पैर से माउंट एवरेस्ट पर विजय पताका लहराया और साबित किया कि विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं तब जब हौसला मजबूत होता है। उनका मानना है कि जब लोग आपके फैसले पर हंसें तो उन्हें अपने काम से जवाब दीजिए। जी, जहां चाह है वहां राह है। हमेशा सकारात्मक सोच रखने से इंसान लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करता है। हम बातें कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित अरुणिमा सिन्हा जी की, जिन्होंने विश्व को भारतीय महिलाओं की शक्ति से परिचय कराया और आज है उनका जन्मदिवस। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं और एक नई राह मंजिल की तरह प्रेरित करते हैं। जी हाँ, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ खो जाता है तो बहुत कुछ मिलता भी है। जी, चलिए अब रुख करते हैं गीत संगीत की ओर।

चलिए दोस्तों, बातें कर लेते हैं मौसम की। मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कई ज़िलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गरज चमक, वज्रपात, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। यदि हम अपने ज़िले की बातें करें तो यहाँ भी दिन भर छुटपुट बारिश होने की संभावना है। और तापमान की बातें करें तो अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और कल यानी कि 21 जुलाई को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हल्की बारिश बौछारें पड़ सकती हैं, तो ऐसा कुछ रहने वाला है मौसम। और आइए सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा गाना।

खूबसूरत शमा हो, सुंदर वादियाँ हों और साथ में हम सफ़र हो, तो फिर बात ही कुछ और होती है। मन गुनगुनाता है और दिल बाग बाग हो जाता है, झूमता है, नाचता है, गाता है कुछ यूँ।

मित्रों, आप सुन रहे हैं जोहार पलामू कार्यक्रम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और आज आपके साथ इस कार्यक्रम में है आपकी दोस्त निर्मला। चलिए अब बातें कर लेते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई। आज है विश्व चंद्रमा दिवस। जी हाँ, और यह दिवस पहली बार चंद्रमा पर मानव के कदम पड़ने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। पहला वैश्विक कार्यक्रम 20 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया और वर्ष 1969 में पहली बार नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। जे चंद्रमा, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं चंदा मामा, और कई तरह की कहानियाँ, लोरियाँ, लोकगीत, गीतों में चंद्रमा के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया, लिखा गया, और कई किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। कभी उसकी सुंदरता की चर्चा होती है, तो कभी उसमें दाग की बातें होती है, तो कभी सूत कातती बूढ़ी दादी की कहानियाँ सुनाई जाती है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन चंद्रमा एक खूबसूरत है और हम उससे काफ़ी जुड़े हुए हैं। अब तो वहाँ तक पहुँच भी आसान है। तो ये जो विज्ञान की दुनिया है ना दोस्तों, रहस्य से भरी हुई है। बहुत कुछ छुपा है इस अंतरिक्ष में, बहुत कुछ जानना चाहते हैं हमारे वैज्ञानिक, और हमेशा लगे हुए हैं वो इस कार्य की ओर कि हम छोटी सी छोटी जो गहराई है, आसमान में चमकते हुए सितारे हैं, चांद हैं, क्या ऐसे और भी कई चांद हैं, ये सब कुछ जानना समझना कितना रहस्यमय है ना। और बस ऐसे ही हमारा विज्ञान आगे बढ़ते रहे और हमें एक नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो आज विश्व चंद्रमा दिवस पर आप सभी को बधाई देते हैं, और चलिए सुन लेते हैं एक गाना गीता दत्त की आवाज़ में।

दोस्तों आइए अब बातें कर लेते हैं खेल जगत की। और आज है विश्व शतरंज दिवस। विश्व भर में आज की तारीख को शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1924 में पेरिस में विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना की याद दिलाता है। इसका उद्देश्य है खेल को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत सन 1966 से हुई थी और बाद में सन 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी। शतरंज खेल हमारे भारत में काफ़ी प्राचीन समय से ही खेला जाता रहा है। चौसठ खेल तो महाभारत का कारण बना, यह हम सभी जानते हैं। आधुनिक शतरंज का उद्भव हुआ प्राचीन काल में गुप्त साम्राज्य के दौरान चतुरंग नामक खेल के रूप में हुए। आज भारतीय खिलाड़ी वैश्विक शतरंज की नई पहचान गढ़ रहे हैं। यह खेल धैर्य बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। विषाद पर हर चाल केवल खेल नहीं बल्कि सोच, संयम और दूरदृष्टि की परीक्षा होती है। इस खेल का उद्गम भारत में हुआ और अब उत्कर्ष की गाथा भी भारत लिख रहा है। हमारे देश के खिलाड़ी शिखर छू रहे हैं, विश्व में अपनी बौद्धिकता का लोहा मंगवा रहे हैं। जी हाँ, अपनी बुद्धि का लोहा मनवा रहे हैं। और हम उन तमाम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं जिन्होंने धैर्य, आत्मविश्वास, अपनी बौद्धिक क्षमता से कई नए कीर्तिमान बनाए और देश को गौरवान्वित किया। और चलिए एक बार फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर, क्योंकि जब बातें ज़्यादा हो जाती है तो फिर बोझिल सा होने लगता है मन। जी हाँ, क्योंकि खेल हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, बीच बीच में मनोरंजन भी होना चाहिए। आइए सुनते हैं यह गाना।

चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्ने और कुछ प्रमुख घटनाओं पर डालते हैं एक नज़र। आज की तारीख यानी कि 20 जुलाई कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। इस दिन विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक स्तर पर कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। और कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं क्योंकि हमारे पास अब इस कार्यक्रम का समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। सन 1976 में नासा का मानव रहित अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 मंगल ग्रह पर उतरा था। जी हाँ, आज ही की तारीख को सन 1976 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानव रहित अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतरा और यह किसी अन्य ग्रह की सतह पर सफल लैंडिंग करने वाले शुरुआती मिशनों में से एक था। वाइकिंग 1 ने मंगल की सतह की पहली स्पष्ट रंगीन तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी और वहां की मिट्टी, वातावरण और जीवन की संभावनाओं से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग वहां पर किए गए। जी, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर समझौता हुआ था सन 1997 में आज ही की तारीख को। आज ही की तारीख को यानी कि 20 जुलाई को सन 1997 को भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ और इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नदी के पानी का जो उपयोग है उस पर बातचीत की गई और उसके लिए सहयोग करने का वायदा किया गया। तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्रों के लिए सिंचाई कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस है। 20 जुलाई सन 1921 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा मानव जाति की अंतरिक्ष उपलब्धियों को सम्मान देने और चंद्रमा के शांतिपूर्ण जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। यह दिन 20 जुलाई सन 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत मानव के पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने की ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है। जी, और इस तरह की अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आज की तारीख में दर्ज हैं। और आज विश्व शतरंज दिवस भी है जो खेल में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और शतरंज मानव की बौद्धिक परीक्षा की परिचय देता है। जी हाँ, उनका ज्ञान, उनके धैर्य संयम की परीक्षा उसमें कितना है यह सब कुछ बताता है। तो ये तो बातें हुई इतिहास से जुड़ी हुई और चलते चलते गीत का मुखड़ा गुनगुना लेते हैं।

0: दोस्तों, बीते पलों की यादें हमेशा संजोए रखना चाहिए, क्योंकि खट्टी मीठी यादें जीवन को आसान बनाते हैं। और इसी के साथ ही जोहार पलामू कार्यक्रम से अब विदा दीजिए, नमस्कार। और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
1: जोहार पलामू।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, और सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पटियाओं पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
2: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
2: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: मोबाइल फोन का आविष्कार

0: किसने किया था।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-5559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
7: क्यों दे दो?
6: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
7: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
11: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
12: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे। मुझे न्याय चाहिए।
11: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
7: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
11: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
7: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
12: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
7: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
11: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
11: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
5: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
13: ये हंस कैसे बताएगा? गद्दी पे बैठ कर
14: सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा रहा
13: है?
5: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
12: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
5: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
7: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।

0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
1: महाराज की जय हो।
2: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
3: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: وتس شوي تكيتو
1: أكيا تات
0: كيا تومس جيان سي أغغت هو جسكي دوارا هم سب كچھ جانتے ہیں اور جو ہمیں جاننا آوشك ہے
1: تات میں اس جيان کے بارے میں جاننا چاہوں گا
0: میں سمجھاتا
1: جی
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
0: श्वेत केतु
1: जी पिताजी,
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात,
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसि कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी,
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी,
0: वो उससे दूर है,

0: कि वो विद्यमान है।
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स, जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: राह फलता।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है। त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: आप अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में। कृपया प्रतीक्षा की रही।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। 10 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में संसद की 19 बैठक होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि UCC विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाउ में मालडोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मालडोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी और मालडोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मालडोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारत वंशियों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मालडोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मालडोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के खिलाफ समूचे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक राष्ट्रवादी साहसी व्यक्तित्व बताया जिन्होंने अन्याय और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं और साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी। श्रोताओं, सुबह के 10:10 हुए हैं और ये समय है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी श्रोताओं, सभी सुनने वालों का बहुत स्वागत है इसका।
1: के लिए डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा, लेकिन वो और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैंसलर्स्की पढ़ा। और स्टैंसलर्स्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो
2: जी,
1: है ना?
2: बिल्कुल।
1: तो वो तो पार्ट मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
2: है
1: कि
2: सही।
1: रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी और वाकई में बहुत ही हट के, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं। और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
2: हाँ, कमाल की बात है। हाँ, बड़ी शरारती थी।
1: नहीं, शरारती नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे, तुम सही की तरह पिटाई करने का। हाँ, और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था। इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है, माँ पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
2: वाह वाह, बड़ा प्यारा।
1: तो हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी, नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी, नहीं लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ। तो माँ ने, नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही, मैंने जिद की और बहुत ही हट गई। मैंने कहा, नहीं मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं। और बाकायदा मुहूर्त देखा, और फिर तुलसीबाग करके पूना में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई। बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे, मतलब तुलसीबाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना, वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से। और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
2: अरे वाह,
1: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम लिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सही के गुड़िया की शादी।
2: गजब गजब। हाँ, ये तो इतनी भव्यता के साथ हाँ, शादी की गई
1: जी। और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई।
2: हाँ, ये भी एक विडंबना हाँ, की बात
1: लेकिन
2: है। ये वाला जिक्र हाँ, आगे की तरफ
1: okay.
2: करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे हाँ। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
1: अरे क्यों
2: एक
1: नहीं?
2: फिल्म हाँ। में जो बात आती है, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
1: हाँ, हाँ।
2: मुझे लगता है उसी जज्बात को वो
1: वाह वाह क्या बात,
2: तो वो गाना सुनते हुए आगे बढ़ा। बात

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स
1: जी
0: डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े
1: या
0: साहित्यकारों को
1: या
0: पढ़ रखा
1: या
0: था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन,
0: हाँ
1: स्कॉट, और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी, और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत, और दुनिया भर के साने गुरुजी, और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली, और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पढ़ रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो ये तमाम चीजें हैं।
1: हाँ
0: लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, और वो

0: हैं अच्युत रानाडी साहब।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात, वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी,
0: जी
1: बहुत ही उम्दा हस्ती थे। हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया, और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़ैनी देने आहे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे,
0: जी
1: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
0: जीवन
1: तो
0: शैली का।
1: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
0: हाँ ये बड़ा मजेदार
1: हाँ,
0: है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बानूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी, और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है, मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे
0: वाह
1: कहानी, और
0: वाह
1: वो जैसे कहानी झुलसती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
0: बिल्कुल
1: हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूँ, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई।
0: जी जी
1: राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
0: शायर हुए।
1: गाने
0: जी
1: वाले। हाँ,
0: जी
1: तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी, वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है, और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए, सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। हाँ, सुराई की नोक ही कहते हैं ना, तो
0: जी
1: सुराई की नोक अटकती है, और वो सुराई साथ साथ उनके वो जा
0: खींची
1: रही
0: चली
1: है,
0: आती है।
1: और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा, इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? तो
0: हाँ
1: उसने कहा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो, और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा,
0: जी
1: लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था,
0: वाह
1: ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ,
0: वाह,
1: ऐसा मुझे लगता है, पता
0: गजब गजब
1: नहीं।
0: गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा हैं, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार देते
1: जी
0: हैं, वो
1: देखो, वो
0: फिल्म
1: साथ साथ होता रहा
0: कह
1: है
0: के
1: ना।
0: सुनाते हैं,
1: हाँ
0: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है,
1: हाँ
0: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा
1: जी
0: बनाती
1: जी
0: है।
1: जी
0: लेकिन दो बातें जो है वो
1: हाँ
0: मुझे बड़ी जरूरी लग रही है
1: हाँ
0: पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली
1: हाँ
0: ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ
1: जी
0: भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी,
1: हाँ
0: वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
1: वो इत्तेफाक की बात है। हाँ, अब मैथ्स मैं नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था, हा? और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांच पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था। अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो मैंने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे। कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकंजम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट, ढगांच्या गडगडाटा सह विजांचा कडकडाट होईल।
0: हाँ,
1: अब मुझे माँ का एक और ये बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे
0: जी।
1: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट, और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म, पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और बिजान से कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना, तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंके कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी होते हैं, वो ही करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो, तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह, ओहो मायूस हुए सब लोग, तो नहीं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
0: जी।
1: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए।
0: वाह वाह।
1: और मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया। और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
0: वाह, कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
1: नहीं नहीं ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पुणे एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह ऐसा कुछ
0: अच्छा,
1: दिन का जो भी छोटा मोटा 5 मिनट के

0: अनाउंसमेंट थी 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई,
0: 3 गुना। फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी। लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो एक दो दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह। कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था, और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था। तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुलकर के घर का फोन दे सकती हैं?
1: वाह वाह वाह।
0: तो दो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो। तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना।
1: हाँ
0: हाँ जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे ताई, एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो बेचारी इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से। वाह,
0: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं। जो आनंद वो पहले उसमें था ना, इताई ताई बोलते हैं यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन
0: नहीं,
1: जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, गदी माडगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी।
0: हाँ,
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा,
1: दो आंखें 12 हाथ उन्होंने लिखी थी, जो ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गदीमा ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: क्या बात,

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ, तो एक नाटक मैंने लिखा पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहाँ बुजुर्ग हैं वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं, जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर एक पहा किती तेरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ तो मैं कोकिला आकर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है, और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है और हरेक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुल देशपांडे।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: कि सही तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीतरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाशा, पत्ते नगरी, पत्ते नगरी पहले था पक्षांत से कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेक्कन जिमखाना जाती थी बस से, तीन नंबर बस अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूँ हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
0: वाह
1: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईट और पान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम बताती हूँ, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है और जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट इन ताश के उसमें, तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर हाँ ये शांति दूत बनेगा फला धमका ये वो, और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे। एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी। और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली काई गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे। उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड्स मिले, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड्स मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, माउस प्रकाशन ने छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में। और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
0: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बदूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
1: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
0: वो एक लड़की दिखी,
1: हाँ, वो नीचे दिखती है नेहा,
0: पत्ते
1: हाँ,
0: से फैसला करते हैं कि जिसके पास रानी आएगी
1: अच्छा,
0: वो जाएगा।
1: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं। और वो दो बुष्टंडे बिचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
0: बिल्कुल बारी बारी से, और फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बदूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बदूर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर की
1: कौन सा गाना सुनाओगे
0: आपकी पसंद?
1: चश्मे बदूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार,
0: बिल्कुल सुनते, काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते हैं।

ಸಗಮದ ನಿಧ ಕಾಲಿ

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है, ये घटना बताइए यहाँ से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था जो आपको मालूम ही है, अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ, हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में। हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण दुगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है।
1: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी,
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने

0: के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
1: जी, तो वो
0: हाँ
1: अखबार में विज्ञापन देखा आपने?
0: हाँ तो वो देखा मैंने, तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो
1: अच्छा, ऐसे ही कह
0: सकता है
1: दिया?
0: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से, और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। सिर्फ एक महीने में शादी आपको पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके हैं आपसे, वगैरह वगैरह बातें होगी।
1: जी
0: एनीवे तो आई ज्वाइंड एनएसडी, एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड। फॉर द फर्स्ट ईयर इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर, क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा एनएसडी में, एंड वो था इब्राहिम अलकाजी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब साथ जिंदगी में पूरा पड़ेगा, इतना हमने सीखा अलका जी साहब से। इट इज फैंटेस्टिक, यूज अ फैंटेस्टिक टीचर, बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं, इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम
0: हाँ
1: इब्राहिम
0: हाँ
1: अलकाजी
0: बिल्कुल।
1: था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था,
0: नहीं, आषाढ़ का एक दिन।
1: आषाढ़ का एक दिन का
0: हाँ
1: मंचन
0: हाँ
1: किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए।
0: जी जी
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया,
1: पत्नी जो होती है
0: हाँ कालिदास की पत्नी,
1: जी।
0: रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी। हाँ तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ, करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया।
1: वाओ।
0: हाँ मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी।
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी
1: जा रही थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी, दोनों मेरे क्लास
1: ओ
0: में
1: जी।
0: थे, और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर वो बात और है। तो लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वॉज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है, और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं, घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा,
1: जी
0: उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को से लुढ़क जाती है उसकी गोद में, और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ,
1: वाह।
0: और ओह रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है,
1: वाह
0: इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन ही नहीं। हमें बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलका जी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे

मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया, दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की भी पूरी बदल दी अलका जी साहब ने। और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।
1: रंग तरंग।
0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग।

हम सुन रहे थे वंदे भारतम एल्बम से विशाल मिश्रा की आवाज में, जिसे लिखा मनोज मुंतशिर ने और आरको ने इसे संगीतबद्ध किया, इस खूबसूरत से देशभक्ति गीत को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि एक बहुत खूबसूरत से आवाज में, एक बहुत प्यारे से एल्बम से है, दीवाना एल्बम से सुन रहे हैं हम यह गीत, जिसे गाया है सोनू निगम ने, फैज अनवर ने इसे लिखा है और साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन,
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन,
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम,
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
5: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
6: जी।
5: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
4: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज में, जिसे लिखा असलम ने और लकी अली ने ही संगीतबद्ध किया इस सुंदर से गीत को। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है वेलवेट वॉइस हरिहरन के इस एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने ही और लिखा है मुशीर झुंझुनाविनी ने।

हम सुन रहे थे ये गीत ट्रैफिक सिग्नल से, चित्रा और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ में। कैलाश शर्मा ने इसे लिखा है और संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: आंसू है उम्मीद तो दर्द की रंज की बात है और फरियाद है मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं।
1: हम सुन रहे थे ब्रीदलेस सॉन्ग ब्रीदलेस एल्बम से शंकर महादेवन की आवाज में, जिसे संगीत बद्ध किया शंकर महादेवन ने और लिखा जावेद अख्तर ने।

जान, मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है।

हम सुन रहे थे जान एल्बम का यह गीत सोनू निगम की आवाज में, जिसे बोल दिए फैज अनवर ने और संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

0: हम सुन रहे थे तुम आए एल्बम से अलका याग्निक हरिहरन की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल और राजू सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया इस खूबसूरत से नगमे को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे जाने मन फिल्म का यह गीत सोनू निगम की आवाज में, गुलजार के बोल और अनु मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं ये गीत लकी अली सुनिधि चौहान की आवाज में।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म सुर से। इसे गाया लकी अली और सुनिधि चौहान ने, निदा फाजली के बोल और एमएम करीम के संगीत के साथ। आज के कार्यक्रम रंग तरंग में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं

0: तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में, बस थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं बहुत सुनहरी सी यादें, और आज याद करने का दिन है गीता दत्त, अभिनेत्री गीता दत्त का, गायिका गीता दत्त का। आज पुण्यतिथि है उनकी। आज ही के दिन हम याद करेंगे अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को और अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है गीता दत्त ने।

0: हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आर पार फिल्म का यह गीत, गीता दत्त ने जिसे गाया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
5: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
6: जी।
5: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
4: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर

0: सुरेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर एंड मिसेस 55 से गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ सजा हुआ। आज याद करने का दिन है बहुत सारे लोगों का और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। आज उनका जन्मदिवस है तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे। कार्यक्रम यादों की महफिल में

0: हम सुन रहे थे ससुराल फिल्म का यह गीत जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में यह संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।
7: कौन है जो सब

हम सुन रहे थे झुक गया आसमान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में ये गीत।

हम सुन रहे थे सूरज फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम आज याद कर रहे हैं उन्हें भी आज जिनका जन्मदिवस है, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। आज उनके जन्मदिवस पर उनके लिए कुछ नगमे उन्हीं की फिल्मों से, आइए सुनते हैं।

मासूम फिल्म से हम सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाडेकर की आवाज में गुलजार के बोल और राहुल देव वर्मन के संगीत के साथ ये गीत। आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज में नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया ये गीत।

मूवी। फिल्म का यह गीत जिसे गाया यशोदास ने रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत इजाजत फिल्म से, आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल हैं और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही

0: कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को दो बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी हैं, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वाल्सा विलियम्स। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to 6 of its former members who passed away recently. They were Nadendra Bhaskara Rao, Omvati Devi, Sudhanshu Seal, Major General Bhuvan Chandra Khanduri, retired, K.P. Dhanapalan and Pyarelal Sankwar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, The opposition members, including from the Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued their protest. Amid ruckus, the chair adjourned the House till 12:30 p.m. When the House met after the second adjournment at 12:30 p.m., the opposition members again continued with their protest over NEET paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, tried to take up the 0 hour, but the opposition members continued their protest. Mr. Saikia said there should be healthy debate in the House and people have sent their representatives to raise important issues. The opposition members did not pay heed to the chair's advice. It led to adjournment of the House till 2 p.m. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, the protest continued. The chair adjourned the House till 2 p.m. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal today introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance to increase the number of Supreme Court judges from 33 to 37. Prime Minister Narendra Modi has said, be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said, when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are as boundless as space itself.
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है जीव मात्र का कल्याण होता है और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे.
2: Union Minister Dr. Mansukh Mandavia has said over 8 crore manuscripts have been digitized under the Gyan Bharatam mission. Replying to supplementaries in the Lok Sabha today, Dr. Mandavia said the Modi government has launched the Gyan Bharatam mission to preserve and digitize manuscripts to facilitate research and make them accessible to the public. Special traffic arrangements have been put in place in New Delhi during the monsoon session of Parliament 2026, which began today. In a social media post, the Delhi Traffic Police said heavy vehicular movement and traffic restrictions are expected in and around the Parliament complex. According to the advisory, the public have been advised to avoid roads such as Rafi Marg, Motilal Nehru Marg, Maulana Azad Road, Parliament Street, Ashok Road, Talkatora Road, Rajendra Prasad Road, Janpath and adjoining stretches, as traffic diversions and congestion are likely in these areas. In Assam, the flood situation has worsened as incessant rain continues across the state, affecting thousands of people in several districts of Upper Assam. Several rivers in Upper Assam are reported to be flowing above the danger level. And with that, we end this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी. पहले मुख्य समाचार. राज्य सरकार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को किया निलंबित. सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजने का है मामला. सीएजी कार्यालय द्वारा आईसीएसएसआर के सहयोग से देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता का आयोजन। कोडरमा जिले के डोमचाच प्रखंड के विंडोमोह बिरहोर टोला में चलाया गया स्वास्थ्य जांच अभियान।

0: बरसात में स्वास्थ्य विभाग की टीम हर सप्ताह बिरहोरों के स्वास्थ्य की करेगी जांच। धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र स्थित बस्ती में फिर हुए भूधसान की घटना में करीब 6 घर हुए ध्वस्त। बीसीसीएल प्रबंधन की सतर्कता की वजह से टला बड़ा हादसा। और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन से महिलाओं के लिए बन रहे हैं स्वावलंबी बनने के अवसर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहो मानसून हो या फिर मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: झारखंड सरकार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने राज्य के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़े मामलों में बिना सक्षम स्वीकृति के सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजी थी। सरकार ने कहा है कि संवेदनशील मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सहयोग से देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सीएजी ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित मौलिक शोध करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करके सार्वजनिक वित्त, शासन, राजकोषीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र में खर्च और सतत विकास पर शोध और जानकारीपूर्ण चर्चा को बढ़ावा देना है। राज्य के शहरी क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर आज विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जहां मतदाता न्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और भरकर जमा कर सकेंगे। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला आयोजित की गई है। कोडरमा जिले के डोमचाच प्रखंड के विंडोमोह बिरहोर टोला में कुछ बच्चों और ग्रामीणों के बीमार होने की सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी भोला पांडे और रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आशीष राज के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने पूरे टोला में स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया। प्रखंड विकास पदाधिकारी भोला पांडे ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम हर सप्ताह यहां पहुंचकर बिरहोरों के स्वास्थ्य की जांच करेगी।
2: हम लोग ने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो कि वायरल फीवर्स वगैरह हैं, छोटे छोटे फीवर्स में ज्यादा वैसा कोई क्रिटिकल केस नहीं है, तो उसके आधार पर अभी हम लोग दवाई दे दिए हैं और योजना बनाई है कि पहले जो है मासिक को यहाँ पे विजिट होता था, जिसको अभी जब तक बरसात रहेगा तब तक हम लोग इसको साप्ताहिक कर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक सांस्कृतिक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही तेजी से विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह जिले के जमुआ थाना परिसर में एक पेड़ मां के नाम लगाया। उन्होंने कहा कि लोग खाली पड़े बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करें। श्री मरांडी ने यहां कहा कि राज्य सरकार सभी थानों का आधुनिक

0: एकीकरण करें।
1: राज्य सरकार को केंद्र से पैसा लेनी चाहिए और जितना भी राज्य में थाना है सब थाना का मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि हर लोगों को अच्छे बैठने की जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि थाना को सीधे हम सजा का ही केंद्र क्यों बनावे, यहाँ लोग आवे तो लोग बैठ सके, उनको बैठने की भी अच्छी जगह हो, ये भव्य तरीके से बनाने। और जमुआ जिस प्रकार से जगह है तो यहाँ तो और विशेष सरकार को ध्यान देनी चाहिए, हम भी सरकार के संज्ञान में लाएंगे।
0: धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र स्थित बस्ती में कल एक बार फिर भूधसान की घटना हुई। लगातार हो रही बारिश के बीच ही भूधसान में करीब आधा दर्जन घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रभावित बस्ती को पुनर्वास के लिए पहले ही खाली करा दिया है। प्रबंधन की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। आज सुबह घरेलू शेयर बाजार सूचकांक में लगभग 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 592 अंक गिरकर 77,559 पर और निफ्टी 147 अंक गिरकर 24,147 पर आ गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अब से कुछ घंटों में चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। साथ में कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत हजारीबाग में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए हजारीबाग की लगभग 15 महिलाएं 30,000 से अधिक जर्सी तैयार कर रही है। इस संबंध में सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट सिर्फ खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म तो दे ही रहा है, साथ ही महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर रहा है।
2: नमो फुटबॉल टूर्नामेंट केवल खेल महोत्सव जो है केवल खेल नहीं रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ रहा है। जैसे पिछले बार हम लोगों का लगभग 24,000 जर्सी हम लोगों ने दिया, इस बार भी हम लोग का टारगेट है कि लगभग 30,000 के करीब में जर्सी दे। ये 30,000 यही के लोगों के द्वारा, यही के महिलाओं के द्वारा दिया जाए।
0: और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां समेत दो अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। खूटी चाईबासा मार्ग पर मुरहु थाना के कुड़की नाला पुल पर आज सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहने नाले में जा गिरी। इस हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उसमें सवार चारों युवक बच गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजने का है मामला। सीएजी कार्यालय द्वारा आईसीएसएसआर के सहयोग से देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता का आयोजन। कोडरमा जिले के डोमचाच प्रखंड के विंडोमोह बिरहोर टोला में चलाया गया स्वास्थ्य जांच अभियान। बरसात में स्वास्थ्य विभाग की टीम हर सप्ताह बिरहोरों के स्वास्थ्य की करेगी जांच। धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र स्थित बस्ती में फिर हुए भूधसान की घटना में करीब 6 घर हुए ध्वस्त। बीसीसीएल प्रबंधन की सतर्कता की वजह से टला बड़ा हादसा। और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन से महिलाओं के लिए बन रहे हैं स्वावलंबी बनने के अवसर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, अर्पण फिल्म का यह गीत है। और हमने आपसे और भी एक बात पूछी थी कि परदेश जाकर कितनी समस्याएं होती होंगी, तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए हैं कि जब परदेश जाते हैं तो अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां जाकर सारे काम उन्हें स्वयं करने पड़ते हैं। जी, ये बात भी सही है। उसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने ये बात भी बताई कि वहां जाते हैं, वहां मिलता तो सब कुछ है, लेकिन अपना

नहीं मिलता। आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि अपनापन तो नहीं मिलता है। इसके साथ ही कई बार हमारे श्रोताओं ने बताया कि कई बार विदेश जाते हैं तो दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि वह उनके देश के नहीं है। तो एक व्यक्ति अपने देश के व्यक्ति का पहले साथ देगा ना कि आपका, तो ये समस्याएं भी, कुछ इस तरह की समस्याएं भी शायद उनके जीवन में आती होंगी। ये सारी समस्याओं के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या हमें लगता है कि उनके जीवन में आती होगी, जिसके बारे में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि अपनत्व। उसने लिखा है कि उनके परिवार के लोग, बहुत से लोग परदेश में हैं, लेकिन जब जब वो भारत आते हैं उनमें अपनत्व की कमी का एहसास लगता है। ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है जब लोग दूर रहते हैं ना, तो हम और वो एक ही तार पर, यानी एक ही बात पर नहीं चल रहे होते हैं। तो कभी कभी जब वो बातें समझ में नहीं आती तो अपनत्व शायद कम लगने लगता होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम बहुत पहले दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए गए थे और असफल रहे। घर से 2 किलोमीटर दूर गोरखपुर में प्राइवेट नौकरी करके दिन गुजारे। हफ्ते में बार बार घर आना होता था, फिर हम परदेश के का अनुभव क्या बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब बाहर गए थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा पापा मम्मी और अपने दोस्तों के साथ पौधे पक्षियों की भी बड़ी याद आती थी, और उससे भी अधिक जिस बेटे को यहाँ छोड़कर गए थे। जी और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें 1 बजे की विविध भारती की गीत माला की भी बड़ी याद आती थी। जी अब हम उसे सुरीला सफर के रूप में आपको सुनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर बरस भारत से करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग विदेश की यात्रा करते हैं। 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, कुछ काम धंधे के सिलसिले में जाते हैं। जी हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका कोई उनका भाई जो है वो बाहर पढ़ने गया था अमेरिका, और उसके बाद फिर वो वापस आ गया। कुछ कुछ कारण हुए और उन्होंने अपने जीवन में कई सारे काम किए। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसी विषय को लेकर, कि जब जो परदेसी होता है उसकी जिंदगी जो दो दुनिया जो है वो दो में बटी रहती है। एक दुनिया वहां जहां वह अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है, और दूसरा जहां वह लौट कर आना चाहता है। हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख में सबसे ज्यादा अपने घर की कमी महसूस होती है। उसे मालूम है कि मेहनत से किसी अपने की आंखों में खुशी आएगी, और परदेसी शरीर से भले दूर हो जाए लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों के बीच में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब परदेश जाने वालों की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली, और परदेश जाने वालों की समस्याओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अभी हमको ये बता दीजिए कि अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, उस गाने को संगीतबद्ध किसने किया है, यानी संगीतकार कौन है। पर इसके साथ एक बात और बताइए कि अगर आपको कभी मौका मिलता, कभी एक चांस मिले, एक मौका मिले अपने देश से बाहर जाने का, वापस आने का भी चांस है, यानी आप बाहर जा रहे हैं तो आप वापस भी आएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों के लिए परदेशी होने का मौका मिले, तो आप अपने देश से कहाँ जाना चाहेंगे, किस जगह पर घूमने जाना चाहेंगे, या किस जगह पर जाकर परदेशी बनना चाहेंगे, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि इसके संगीतकार कौन हैं, तो आप सबने सही बताया, इस गीत के संगीतकार राजेश रोशन हैं। और हमने आपसे पूछा कि अगर आप कहीं जाना चाहेंगे, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे उत्तर दिए कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब हमें विदेश नहीं जाना, बहुत दूर है, हाँ अमृतसर, कश्मीर और मुंबई आना है विविध भारती में। जी ज़रूर, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे कोई परिवार के जन है जो फ्लोरिडा अमेरिका में और कतर में रहते हैं, तो वो देश वो घूमकर आए हैं, तो ऐसी कोई उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा दिख नहीं रही हैं। इसके साथ ही कई सारे लोग का ये कहता है इंग्लैंड जाना है, कोई कहता है स्विट्जरलैंड जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कहीं जाना है, सभी को सभी जगह जाकर घूमकर आना है और घूमकर वापस आना है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक विचार रखते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो वापस आएं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे पति जब छोटे उनके पति जब उनके बच्चे छोटे थे तब वो ONGC में बहुत अच्छी जॉब करते थे, तो वो चले गए तो बच्चों के साथ सास ससुर देवानंद के साथ रह गए, उनको भी बहुत तकलीफ हुई और बच्चों के साथ सबके साथ रहने के बाद भी तकलीफ तो इनको भी हुई, तो उनका कहना है कि बाद में उनके पति वापस आ गए तो घर बड़ा खुशनुमा हो गया। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही आवश्यक बात लिखी, वो लिखते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन की समस्या आती है दीपावली आदि त्योहारों के समय अपने परिवार तक लौटने के लिए। जी हाँ, ये समस्या भी जब भारत के लोग भारत में ही किसी और शहर में काम करते हैं

तो ये समस्या तो आती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, विदेश में खाने पीने की समस्या होती है। अमेरिका में 97% लोग मांसाहारी हैं और भारत में शाकाहारी लोग निवास करते हैं, और मांसाहार और शाकाहार की तो समस्या है, उसके साथ एक और समस्या है स्वाद की। हमारा स्वाद अलग है, उनका स्वाद अलग है। हम मसालों भरा भोजन करते हैं और वहाँ पर वैसा भोजन मिलता नहीं, तो शायद समस्या तो होती है। और हमारे एक श्रोता लिख रही है, इस चीज़ के लिए बड़ी सकारात्मक बात लिखी है कि उनकी बेटी जब बाहर गई थी उसे घर की बड़ी याद आती थी, धीरे धीरे नए माहौल में ढल गई, अब छोटी बड़ी समस्या का सामना खुद करती है और आत्मविश्वास भी उसका बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है अभी आपसे बात करते करते, हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों को पढ़ते पढ़ते, कि जब भारत के शिक्षित बच्चे विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद उनका क्या होता होगा, यानी हमारे भारत का क्या नुकसान होता होगा और भारत का क्या लाभ होता होगा, यानी हमारे देश का क्या लाभ या क्या नुकसान हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए इस गीत के साथ कि हमारे देश का जब पढ़ा लिखा बच्चा विदेश जाता है तो हमारे देश का क्या लाभ है और क्या हानि है, जरूर से बताइए। और ये गीत मैं आप सबको सौंप रही हूँ और मुझे विश्वास है कि ये गीत तो आप सबकी लिस्ट में पक्का होगा और सबकी पसंद का ये गीत है। सुरेश वाडकर और बेला की आवाज में ये गीत है, समीर के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है। बताइएगा फिल्म कौन सी है।

जी, आप सबने सही पहचाना। हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह गीत सुन रहे थे और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप अगर भारत का जो शिक्षित बच्चा है वो अगर विदेश जाता है तो क्या होता है। इसका उत्तर हम आपसे सुनना चाहेंगे, ज़रूर से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूबसूरत सा बात है कि हमारे श्रोता बता रहे हैं कि वो जब विदेश, वो शाकाहारी हैं विदेश, क्या उन्हें भारत में भी दिक्कत आती है कई बार। अच्छा, अब हम विदेश को छोड़कर जब हम अपने ही देश में आते हैं और अपने गाँव को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो जाने के लिए या आप कभी उस जगह पर काम करने के लिए गए होंगे तो कई सारी चीजें भी तो नई नई मिलती है ना। कई सारे रिश्ते मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं, उन सब संस्कृतियों के साथ भी जुड़ जाते हैं। और जो विदेश जाकर रहते हैं वो लोग भी अपने जीवन में बड़ी अलग तरीके से अपनी एक दुनिया सजाते हैं। हाँ, रिश्ते जो अपने रक्त के हैं ये अपने हैं, वो छूट भी जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मजबूत रिश्ता आपका छूटा है जो आपको छोड़कर कभी चला गया हो।

हम सुन रहे थे माचिस फिल्म का ये गीत, हरिहरन, सुरेश वाडकर, विनोद सहगल और केके की आवाज़ में, गुलजार के बोल और विशाल के संगीत के साथ। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत के पढ़े लिखे बच्चे जब विदेश जाते हैं तो लाभ होता है, हानि होता है, जो भी आपके मन में विचार है वो आप अवश्य रखें। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं कि कई बार विदेशों में गए बच्चे के माँ बाप इतने अकेले हो जाते हैं कि मृत्यु पर अगल बगल के पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता, और जब तक 3-4 दिन बाद फ़ोन करे तब पता पड़ता है, और कई बार वीज़ा आदि की समस्याओं के कारण भी कई सारी चीज़ें होती हैं। हमारे एक और श्रोता लिखता है, रिश्ता कैसा भी हो दर्द बड़ा सहनीय होता है, उसे भूलना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि हमें दूर जाना भी होता है, दूर जाकर भी दिल तो उस इंसान से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि रिश्ते कांच के नहीं होते जो टूट जाएं, दिल से जुड़े होते हैं। कितनी सकारात्मक बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शिक्षित बच्चे विदेश जाकर नौकरी करते हैं, वहां की उपलब्धियों से उनका हुनर दिखाई देता है, राष्ट्र और मजबूत होता है, पर अपने देश में केवल नाम की प्रसिद्धि मिलती है, लाभ कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने देश में जब काम करते हैं तब आपको लाभ बहुत मिलता है, यहाँ पर रहकर भी कई सारे बच्चों ने बहुत कुछ कमाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो जगदलपुर गए थे बस्तर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का चित्रकूट जलप्रपात, हरे भरे जंगल, हरियाली उनको आज भी याद है, मन मचल जाता है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा आनंद आता है जगह पर, वो बड़ा अपनापन भी है लोगों में। वैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं हर जगह प्रेम ही मिलता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल विदेश जाने वाले विद्यार्थी वापस आते तो अपने साथ अंग्रेजी मैम लेकर आते हैं। नहीं, ऐसा सभी नहीं करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमारे देश के बुद्धिजीवी जब उसी ज्ञान को प्रदेश में जाकर सेवाएं देते हैं तो कभी कभी गर्व होता है, उससे अधिक दुख भी होता है कि इसी ज्ञान को भारत माँ को समर्पित करते तो करोड़ों लोग लाभान्वित होते। मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो 5-6 साल बाद वापस आ गए, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनापन और अपने देश की हर बात याद आती थी, इसलिए वो वापस आ गए। कितने अच्छे बच्चे हैं जो अपने देश के लिए वापस आ गए। इसके साथ उन्होंने, हमारे श्रोता लिखते हैं, अपने बच्चों को कहा कि कम कमाकर भी अपने देश में रहकर तरक्की करने की सलाह दी गई है। हमारे श्रोता ने लिखा, भारत का बच्चा विदेश क्यों जाए, इस देश में अपार संभावनाएं हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, जब हमारे देश के बच्चे विदेश जाते हैं तो देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, इससे विदेशी मुद्रा रेमिटेंस की प्राप्ति होती है, तकनीकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण और वैश्विक मंच से देश की शाख बढ़ती है, जिससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोताओं ने, एक ने और वही विवाह वाली बात को कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। मैं जब विद्यालय में पढ़ा करती थी तब मेरे शिक्षक ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी कि जब आप विदेश जाते हैं तो एक काम करिए, आप विदेश जाइए लेकिन विदेश जाकर वहाँ कुछ रोज़ रहकर वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो आप सीख कर आएंगे, देख कर आएंगे, वो अपने देश में अगर लगाएंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, और वो भारत में आकर उस चीज़ को लगाएगा तो भारत की साख और बढ़ जाएगी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आप भी अपने लोगों को बता सकते हैं। हमारे लोग लिखते हैं कि पहले लोग अपने प्रदेश से दूसरे राज्य में कमाने जाते थे तो उन्हें प्रदेश कहा जाता था, और ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, उनकी भाई की कई ट्रांसफर कई जगह होती है, कई सारी संस्कृति से वो शिक्षा भी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सारी बातें हैं कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग लोग बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो हम उनसे बस यही बात कह सकते हैं कि आप चले तो गए हैं लेकिन आपका देश आपसे बहुत प्यार करता है। इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बताइए।

हम सुन रहे थे ये गीत, आप लौट चलें, और हमने आपसे पूछा इसके गायक कलाकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक इस गीत के गायक कलाकार हैं। हमारे श्रोता जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिल को कचोटने वाली बात, या कहें हृदय से रोने वाली बात लिख दी है, जहां पर सच में हर किसी का हृदय द्रवित हो जाएगा। वो लिखते हैं कि जब पहली बार बेटा विदेश जाता है तो माँ का कलेजा मुँह में आ जाता है और माँ को बहुत घबराहट होती है, होती ही होगी ना, अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर भेजने में। हमारे श्रोताओं ने कई चीजें बताई हैं विदेश जाने पर, कि विदेश चले जाते हैं, परिवार दूर हो जाता है, पर कई बार उस ओर से देखें तो उनकी भी मजबूरी होगी जो उन्हें जाना पड़ा। अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाना पड़ता, पर कई बार रोटी उन्हें दूर खींच ले जाती है और कई बार तो वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम और आपने जो चिट्ठियां लिखी होती हैं, उन्हें संदेश भेजे होते हैं, उन्हें प्यार भेजा होता है, वो उनका साथ देता है। हमारे श्रोता बताते हैं उन्होंने ये फिल्म करतारपुर सनम सिनेमा में देखी हुई थी। हमारे श्रोता बताते हैं कि वो नेपाल घूमने जाते थे और दोस्तों को कहते थे कि विदेश गए हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घूमने तो गए हैं। तो चलिए एक काम कीजिए, जितने लोग आपसे दूर रहते हैं या जो लोग दूर रहते हैं, दोनों आपस में चिट्ठियां जरूर भेजिए। व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन चिट्ठियां एक बार नहीं, कई सौ बार एक दूसरे की याद, एक दूसरे के प्यार में डुबो देती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत और बताइएगा ये गीत गाया किसने है।

0: चिट्ठी आई।
1: और इसी के साथ हमारे एक और श्रोता ने एक चिट्ठी लिखी है छोटी सी, और वो चिट्ठी ऐसी है कि देसी बायना सब जग मीठा। यह विद्यापति जी ने कहा है, बिल्कुल अपना देश जहाँ है, जहाँ की मिट्टी, वहाँ से खान पान, वहाँ से गोली, और वहाँ अपनापन दुनिया की सारी सुख समृद्धियों से ऊपर है। पर दुनिया कहीं भी बहुत सुख समृद्धि हो, सोने चांदी के पलंग बिछावन है, पर हमें तो अपने भारत की खटिया ही बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। और हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत, पंकज उदास और साथियों ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आज का सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। सदा सुखी रहिए। नमस्कार, प्रणाम।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से

0: स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: To put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the House to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the House.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
5: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
6: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे ये गीत आज और कल फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में एक और गीत जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने, नूर देवासी ने इसे लिखा है, विपिन ने इसे संगीतबद्ध किया है। बागी शहजादा फिल्म से ये गीत है।

0: ये गीत हमने सुना गुमराह फिल्म से, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म दिल ही तो है से आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रोशन का है संगीत।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
1: मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आज वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री विभाग की वर्तमान कार्यप्रणाली, आगामी योजनाओं और अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं। राज्य में वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, नए पौधरोपण अभियानों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह शहर के विकास के लिए 17,39,00,000 रुपए की लागत से स्वीकृत 119 विकास योजनाओं का आज शिलान्यास किया है। मौके पर मंत्री ने अधिकारियों और संवेदकों को विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इन 119 योजनाओं के धरातल

स्थल पर उतरने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। देवघर के महापौर रवि कुमार राउत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर शहर के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के प्रतिनिधि

0: से सुन रहे हैं। रांची के तुपदाना थाना क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस ताजा कार्रवाई के बाद मामले में पकड़े गए कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कैग और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च मिलकर देश भर के कॉलेज छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कैग की ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित मौलिक शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश, बादल गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, चतरा, पलामू और लातेहार में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है। इस बीच दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र के लटुलिया गांव में आज खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 135वें डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी आज ट्रॉफी टूर के तहत गुमला जिला मुख्यालय पहुंची। जिला प्रशासन, खेल विभाग और स्थानीय खेल प्रेमियों ने सेना के जवानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर परमवीर अल्बर्टेका स्टेडियम में प्रदर्शनी फुटबॉल मैच खेला गया। भारतीय सशस्त्र बल और झारखंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन 25 जुलाई से राजधानी रांची में होगा। मौके पर उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि यहां डूरंड कप जैसी ऐतिहासिक ट्रॉफी का आना हमारे युवा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए बेहद गौरवशाली और प्रेरणादायक क्षण है।
1: डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट का कप है और इस टूर्नामेंट कप का गुमला जिला में आगमन होना निश्चित तौर पर हमारे गुमला जिला के खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है और इससे हमारे गुमला के खिलाड़ी हैं, गुमला एक खेलों की नगरी माना जाता है, उसे प्रेरणा मिलेगी।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज हैं चंचल वर्मा। तो चंचल जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार मंजरी, आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। और जब भी हमारी ये जोड़ी साथ में आती है ना, तो बहुत सारे श्रोता इस बात का कमेंट करते हैं कि दो वर्मा बहनें या दो वर्मा सखियां साथ में हैं।
1: क्या बात है, देखो
2: तो यूं तो हमारी मुलाकात होती है, लेकिन इस मंच पर आज हम वाकई बहुत दिन के बाद साथ में आए हैं।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इससे पहले भी हम लोग कुछ कुछ गप्पे मार रहे थे, तो उसमें भी बड़ा आनंद ले रहे थे कि व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन की ही बातें चल रही थी, है ना। और आज देखो हम लोग व्यंजन की बात करने वाले हैं।
2: बारिश के मौसम में कुछ खास व्यंजन बनते हैं
1: जी,
2: इसे चाट पकौड़ी और तली हुई चीजों का एक खास मजा होता है खाने का। लेकिन आज जिन व्यंजन की हम बात करेंगे, ना तो वो चाट पकौड़ी है ना कोई तली हुई चीजें हैं।
1: बिल्कुल।

0: लेकिन है वो पंजाब के बहुत ऑथेंटिक व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन है जिन्हें बड़े चाव से बनाया जाता है, खाया जाता है। और जो हमारे सुनने वाले श्रोता पंजाब के आसपास रहते हैं या वहां से ताल्लुक रखते हैं, वो जरूर इनके बारे में जानते होंगे और रेसिपीज हमें लिखकर भेज रहे होंगे।
1: बिल्कुल। और वो भाई व्यंजन भी तो बता देते हैं कि दाल मखनी और पिन्नी के बारे में हम बात
0: जी, तो
1: करेंगे, है
0: एक
1: ना।
0: है ऐसी सब्जी जो खास मौकों पर बनाई जाती है, या पंजाबी घरों में तो आमतौर पर दाल मखनी बनती ही रहती है,
1: बनती
0: और
1: बनती है
0: मीठे व्यंजन की बात करें तो हम पिन्नी बनाएंगे।
1: बिल्कुल। और बारिश के पानी की बचत कैसे की जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
0: हाँ, क्योंकि बारिश का पानी हमें, यानी कि बारिश का मौसम तो होता है सिर्फ 3 महीने के का, कभी कभी 4 महीने भी चलता है, या कहीं कहीं 2 महीने भी रहता है, लेकिन पानी की जरूरत तो पूरे 12 महीने होती है,
1: बिल्कुल।
0: ताउम्र होती है। और यही पानी होता है जो 3 महीने बरसेगा, लेकिन बाकी के जो और 9 महीने हैं इसी पानी से हमें काम चलाना है, इसीलिए इसकी बचत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो इसके बारे में हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। और कथा सुधा के अंतर्गत दो बहने का भाग तीन अंतिम भाग हम सुनवाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी है ये। तो उससे पहले चंचल एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते
0: बिल्कुल
1: हैं।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: तो चंचल कितना प्यारा सा ये गीत अभी हम लोगों ने सुना।
1: गृह प्रवेश फिल्म का बहुत सुंदर गीत था और इसके बाद हम सुनने वाले हैं कहानी। तो कथा सुधा के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने का तीसरा और अंतिम भाग हमारी सखियां और सखा सुनेंगे।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: दो बहने दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है।
5: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया कौन जाने, जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
4: आखिर रामदुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई।
5: 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च, मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी।
4: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे।
3: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? आइए सुनते हैं आज इस कहानी की तीसरी और अंतिम कड़ी।
4: एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था वरना नई आफत आ जाती, लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनके सफाई और सजावट में वो मुनहमीक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक खिदमतगार था, उसने देखा कि बहू जी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी मां से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भी भागते थे। जो भी कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते, दफ्तर चले जाते, दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी, वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई, उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया।
5: क्या करते हैं आप, उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। अब इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा हम लोगों को, मगर आपको अकल आई ही कब थी? मैं अपना पर्दा ढांकते फिरती हूं और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा भी शर्म नहीं। जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया आपने तो, खामखा मुझे जलील करते रहते हैं बस।
4: दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा,
6: आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पे तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी का सख्त तकाजा है, तो वक्त निकालना पड़ा।
4: रूप कुमारी ने बात बनाई।
5: हाँ, वो तुमसे उस दिन रवा रवि में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था।
6: जी
5: जी।
4: गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा,
6: ये घर दीदी इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी।
4: रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है, दूसरों के जज्बात की उससे बिल्कुल परवाह नहीं, ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली,
5: पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़ियां रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है।
4: गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला,
6: मुझे तो इस घर में ऐसे घर में हफ्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए दीदी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, और आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। हाँ, सुन रहे हैं दीदी, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उन्हीं के मकान में रहता हूं, सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरी इख्तियार में है, मेरी इख्तियार में, सुन रहे हैं आप दीदी?
5: सुन रही।
6: जिसको जो मकान चाहूं दे दूं, सब मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या ना लूं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा दीदी, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं, मैं बहुत अदब करता हूं आपका, आप मेरी दीदी है। हाँ?
4: रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में हैं, जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं, रुखसार कुछ फूल गए हैं, जबान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था जिसे कुछ देख कर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया,
6: दीदी आपके लिए मेरी जान हाजिर है, दीदी आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। कौन हूं? मुख्तार। सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ, मैं जो कुछ कहता हूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती है, मुझे अपना बेटा समझती है। क्या? बेटा, बेटा समझती है मुझे, मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। आपको बताता हूं, मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कितना? 20 रुपए का। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता था। वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं दीदी, किसी से कहना नहीं, वो खुफिया फरोश था, कोकेन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं, हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हां, मजाल है कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले, बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं, कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1,000,
7: देता हूं 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरे खर्च करता हूं। और वो बुढ़िया, बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है, जितना चाहूं खर्च करूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी एक मिनट, ये
5: क्या है?
7: थोड़े से रुपए।
5: ये थोड़े से रुपए नहीं है, ये तो पूरा नोटों का बंडल है। ये इतने रुपए?
7: दीदी क्या? ये आपके कदमों का सदका है। मुझे दुआ दीजिए, जो ईमान और उसूल के उपासक हैं उन्हें दौलत लात मारती है, दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है कि ये दौलत मुझे कहां से मिली? किसी को भी देख ली, जो है सो अपने फन में माहिर है, काम इतना सा करते हैं, पैसा इतना सारा बना लेते हैं, है? अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है ना दीदी? जायज है ना? जी हाँ, जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। और दीदी मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं, और मेरी जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी ऐश करूंगा दीदी, मैं भी लूटूंगा, समझे ना? ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। कहिए तो गिनवा दूं, यहां कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, न जाने कैसे कैसे गलत काम करके करोड़पति हो गए लोग दीदी। अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मैं भी ऐश करूंगा, लूटूंगा, मैं भी ऐश करूंगा, खैरात भी करूंगा।
4: उमानाथ ने आगे कहा,
8: अरे मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है।
4: गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली, यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी, जो तरगीबें कई दिन से अच्छे अच्छे दिलावेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी, खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है, रामदुलारी पर उसे रहम आया जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया।
5: जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शान शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमायगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।
4: उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा,
8: सुनो, यहां बैठा बैठा

0: क्या बक रहा था?
1: भाई मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं।
2: रूप कुमारी ने उसकी तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देखकर जवाब दिया।
3: वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था।
1: मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए।
3: जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है।
1: मगर क्लर्की में ऐश कहां, क्यों ना साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुफ्त उठाऊं।
3: लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही।
1: मगर एक बात तो है।
3: क्या?
1: मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता।
3: हां यकीन तो ना आता, और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है।
1: मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया।
3: वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी।
1: हाँ ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा।
3: ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है।
1: नहीं वो तो अपनी कार पर थे।
2: रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली,
3: सुनो तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हाँ ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाकर बैठे, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं।
4: कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी, यानी बारिश की कुछ बातें। बारिश के पानी की बचत क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए, और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं, तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा। किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है।
1: अच्छा,
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज्यादा लेता है। किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15-17-18 इतने मिनट का समय लग जाता है, और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने।
1: बिल्कुल, तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना, तुमने रिप्लाई दे दिया। तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार है। बारिश का पानी जो है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। तभी तो इस दौरान सब तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और बारिश के दौरान

0: नदियाँ, नहर, बांध, कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, झील और सागर, ये सब ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी खूब भर जाता है। वर्ष भर इनमें से पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा का जल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि संपूर्ण जीवन और पर्यावरण के लिए अमूल्य है।
1: और जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ झरनों का जो पानी है वो बोतलों में भर कर लेकर आते हैं, और इस तरह का पानी आजकल तो बाजारों में बिकने भी लगा है, जो कि नेचुरल पानी होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के पानी की और हमें पूरे साल भर इस जल को चलाना है,
0: चलाना
1: तो
0: रहता है।
1: इसीलिए इसकी एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है। और इसे इकट्ठा करने के या बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, और पीने के पानी के लिए बात करें फिल्टर करने की और शुद्धिकरण की, तो वर्षा के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कपड़े धोने हुए, बर्तन साफ करना, फर्श की सफाई, और शौचालय में भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए जैसे खेतों, बगीचों और किचन गार्डन की सिंचाई में बारिश का जल बहुत उपयोगी होता है।
1: और मंजरी, मुझे याद है बहुत सारे जो बड़े बड़े कपड़े होते थे, दरियां होती थी, जिन्हें हम आमतौर पर धो नहीं पाते हैं, तो छतों पर बारिश के दिनों में उनको रख दिया जाता था, और फिर महिलाएं उन्हीं पर थोड़ा सा ब्रश चला के उन्हें साफ करके, तो इस तरह से भी वर्षा के जल का उपयोग करते
0: बिल्कुल,
1: थे।
0: और साथ में वो लोग खुद भी नहा के आनंद भी ले
1: हाँ,
0: लेती थी
1: बारिश
0: वर्षा
1: में
0: का।
1: भीगने का आनंद भी मिल
0: जी,
1: जाता है, और ऐसे कपड़े जिन्हें हाथ से धोना जल्दी से संभव नहीं हो
0: लेकिन
1: पाता है।
0: आज भी चंचल हम लोग यही करते हैं कि जब कभी बारिश होने लगती है ना, तो डोरमेट सारे बाहर डाल देते हैं कि जल्दी से पानी से वो धार से पड़ पड़ के उनकी धूल
1: जी
0: निकल जाए, तो इसका एक फायदा मिल जाता है। और चंचल, पशु पक्षियों के लिए वर्षा जल उनके पीने के पानी की जो है वो उसकी मात्रा मिल जाती है उन्हें, और साफ सफाई के काम भी आता है। उद्योगों में शुद्ध किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल हरियाली बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है और जैव विविधता को सहारा देता है।
1: बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, खासतौर पे हम जंगलों की बात करें, जहाँ पानी डालने पौधों में कोई भी नहीं जाता, तो ये जो बारिश का पानी है ये साल भर तक मिट्टी में जो नमी बन जाती है उससे, उसी से वो जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक हरे हरे रहते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: हमने अपने सामने भी देखा है कि मुरझाया सूखा पौधा भी हरा हरा हो गया, पत्तियां निकल आई, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लगता है बारिश इन लोग के लिए एक मुफ्त उपहार है। और आग बुझाने और आपातकालीन उपयोग, संग्रहित वर्षा का जल जो है उपयोग आता है इन आपात स्थितियों में किया जा सकता है। घर के आंगन या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे पानी जमीन में समा सके। सीमेंट की जगह जहां संभव हो मिट्टी या इंटरलॉकिंग पक्की सतह रखें ताकि वर्षा का पानी जमीन में जा सके।
1: और बहुत सारे तरीके हैं मंजरी कि हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और बहुत सारे जो बड़े सोसाइटी हैं महानगरों में, जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं, स्कूल, कार्यालय, किसी भी बिल्डिंग की छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दिया, तो बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, और ये पानी इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।
0: बिल्कुल, और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है, जिससे धूल, मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाएं। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
1: और इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को जमीन में उतारना होता है, और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है, उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है, पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है, और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
0: और इसके साथ साथ एक सोक पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना एक साधन है कि रिचार्ज कुओं, हैंडपंपों या बोरवेल के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाना, खेतों में तालाब बनाकर पानी संचित करना भी एक जरिया है, और गांव में चेक डैम और छोटे बांध बनाना तालाब, झील और पोखरों का संरक्षण एवं गहरीकरण करना होता है।
1: तो इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम गीत भी सुनते हुए चले आगे बढ़े।

0: गीत बड़ा सुंदर सुनवाया, लेकिन हम बात कर रहे थे ना बारिश की, बारिश आ चुकी है और कमेंट्स भी आ चुके हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब हम कॉलेज में थे तब हमारी केमिस्ट्री टीचर वर्षा होने पर लैब में रखी हुई कांच की बड़ी बोतलें और बड़े प्लास्टिक के ड्रम हमसे रखवाती थी ताकि गिरते हुए पानी को इकट्ठा किया जा सके। बाद में हम इस एकत्रित पानी का उपयोग प्रयोगशाला में किया करते थे, क्योंकि ये जल प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण और संघनन द्वारा डिसिल्ट होकर बरसता है, इसीलिए जमीन पर गिरने से पहले की पूरी तरह स्वच्छ और मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, चंचल, बारिश के पानी को बचाने का महत्व, ये गर्मी में पानी की कमी से राहत देता है और इससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधरता है, कण में जो जल और उसका स्थल सुधरता है, इसको आप निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। जो आपकी छत में पानी गिर रहा है, बारिश का वहां पर पाइप लगा दे, वो पानी पाइप में जमा हो जाएगा और इसको आप संचय कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। आंगनों में भी आपके जो बरसात का पानी गिरता है उसको भी आप आंगन से संरक्षण कर सकते हैं, यानी बाल्टी ड्रम वगैरह रख के आप कर सकते हैं। और इसी के
0: साथ एक अन्य संदेश है कि कल बचाना है तो जल बचाना है, बारिश एक वरदान की तरह है, बस हमें इसके पानी का प्रबंधन कैसे करना है इस बात को सीखना होगा। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं, बस देती है, उसी ने हमें जीवन दिया और जिंदा रहने के साधन भी दिए, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए जरूरी मीठा पानी, यानी ये वो पानी है जो हमें जिंदा रखता है। बाकी खारा पानी तो अथाह भरा पड़ा, यानी कि समंदर की बात कर रहे हैं कि भू जल स्तर पर, यानी कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
1: क्या बात है।
0: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
1: जी, कितनी बहुत अच्छी बात लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है, अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
0: यानी कि ये तो हुई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियां जिससे बनपती हैं, वो एक अलग चीज़। तो दोनों ही बातों को ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी लिखते हैं कि कथा सुधा और पंजाब के व्यंजन सुनने की उत्सुकता है। बारिश का पानी बचाने के लिए हमारे सोसाइटी में छत पर जमा हुआ पानी पाइप डालकर आसपास के जमीन में छोड़ दिया है। भूजल वृद्धि से सोसाइटी के बोरवेल अच्छे से भरी रहती है, सोसाइटी की बगिया खिली रहती है। बारिश के पानी की बचत कैसे करें, इस विषय पर हम सोसाइटी के बच्चों का वर्कशॉप लेते हैं, कथा कविता और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें भी अच्छा से सतर्क करवाते हैं, यानी उनको भी जानकारी दिलवाते हैं। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है
0: और सही बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये बात सिखानी है, क्योंकि हम तो आज हैं नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी का स्तर कम ना हो और एक एक बूंद, मतलब जो बोतल है वो खरीद कर हमें लेनी पड़ेगी और तब हमें कीमत समझ में आएगी, तो उस नौबत तक हम पहुंचे ही ना अगर हमें आज ही से ही इस पानी का अगर संचय करना शुरू करेंगे।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं, बारिश के पानी की बचत करना चाहिए। पहले देखती थी कि बारिश का हुआ तो घर के आंगन में एक दो खाली बर्तन, बाल्टियां और बड़े बड़े बर्तन रख दिया करते थे और उसमें बारिश का पानी जो इकट्ठा करते थे वो कपड़े धोने के काम आता था। दादी उसे साफ बोतल में भर के रख देती थी और उससे अपनी आंखें धोती थी। तो भाई ये जानकारी तो आपने उनके अनुभव से लिखी है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप इस पर आप अपना है, मेरा सुन के ना अपना है। जो उन्होंने लिखा वो अपनी यादें लिखी हैं।
0: और जल संचय अभियान लिखते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है कि 1986 और 87 की ये बात कर रहे हैं, गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार में बारिश बहुत ही कम बरसी थी, तब अकाल जैसी परिस्थिति हो गई थी वहाँ पर, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेतों में पानी संचय करने का अभियान चलाया गया, जिसे ढलान वाली जगह पर खेतों में के गोल किनारे या चौरस खुदाई करके कुंडी बनाकर बरसात के पानी का भरना, बाद में जब पानी जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर सीमेंट के पाइप द्वारा कुएं उनमें पाइप डाले जाते हैं कुएं की तरह, और इस तरह से उस पानी को काम में लिया जाता है। उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लिखकर भेजी है। चलिए अब गीत सुन लें।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की, व्यंजन की बात करेंगे।
6: तो पिन्नी जो है ना, पंजाब का जो व्यंजन है, ये पारंपरिक रूप से उड़द दाल की

0: बनाई जाती है, वैसे लोग इसे आटा, मैदा, किसी अन्य आटे से भी बनाते हैं। लेकिन उड़द दाल की पिन्नी किस तरह बनाई जाती है, इसकी बड़ी एक अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है, हमारे श्रोता की तरफ से ही मिली है, तो हम बता दें। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: धुली उड़द की दाल 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बूरा या फिर पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं 300 ग्राम, और इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच, और अगर आपको स्वाद ज़्यादा चाहिए तो आप 2 चम्मच भी ले लीजिए। काजू बादाम करीब करीब 50-50 ग्राम लेने हैं बारीक कटे हुए। और इसे बनाने का जो तरीका है, कमेंट्स में जिस तरह से बताया गया है कि उड़द की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी को छानकर दाल को मिक्सर में थोड़ा सा दर दरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे, इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आँच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी, बूरा, जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दें, और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल। और देखो, एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मखनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, प्याज डालिए और और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए। और इसमें दाल, नमक और जरूरत के अनुसार 2-3 टेबलस्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिलाइए और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम आप सर्व कीजिए।
0: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो
1: बिल्कुल।
0: सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सेहतनामा कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के वांछित उग्रवादी नरेश गंजू उर्फ रविकांत को लावालौंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सिमरिया एसडीपीओ ने बताया कि इस उग्रवादी पर हत्या, रंगदारी और पुलिस पर हमले सहित 6 मामले दर्ज थे। पुलिस और एसएसबी का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। हजारीबाग पुलिस ने विशेष छापामारी अभियान चलाकर विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमन कुमार के निर्देश पर 28 टीमों में शामिल 91 पुलिसकर्मियों ने यह कार्रवाई की। एसपी ने अपराधियों की धरपकड़ जारी रखने की बात कहते हुए आम जनता से सहयोग की अपील की है। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में आज करंट लगने से 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। कोटेक सेरा स्थित मौसीबाड़ी के पास छात्र एक रथ को घुमा रहे थे, तभी वह 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक में विधायक कल्पना सोरेन ने सदस्यों के साथ महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता अगुआ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वर्ण रेखा महिला समिति की अध्यक्ष रेणु सहगल ने पतरातु पीवीयूएनएल टाउनशिप में प्रगति 2.0 टेलरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य हनुमानगढ़ी, शाह कॉलोनी और कटिया गांवों की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल से ग्रामीण महिलाएं कौशल विकास कर स्वरोजगार से जुड़ सकेंगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: तीसरा है, प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है।
3: जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी,
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको, जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है।

0: जी, और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका।
1: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूं, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते हैं पहले बाथरूम ढूंढते हैं।
0: जी
1: ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है, क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और
0: जी
1: उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है,
0: जी
1: लेकिन वो
0: जी
1: एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में, काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूअस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए।
0: जी
1: सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है।
0: जी
1: लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
0: जी जी
1: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है। ये जरूरी नहीं है,
0: बिल्कुल
1: ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम
0: जी
1: शुरू होने का डर रहता है।
0: जी
1: तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स, और
0: बिल्कुल
1: सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
0: जी। बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम जाएंगे, हमें वहाँ फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
1: एब्सोल्युटली, कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है,
0: जी हाँ
1: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी
0: जी
1: पड़ता है,
0: जी जी
1: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं,
0: अच्छा
1: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है
0: जी
1: और उनको कंटिन्यूअस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है
0: जी जी
1: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं।
0: जी
1: सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं।
0: जी
1: सो इन शॉर्ट, ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: मान लेना कि नहीं अभी इसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफर ही होना है, ये गलत बात है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इंप्रूव हो सकती है।
0: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से, और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं, और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है। तो ये क्या वजह हो सकती है, और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
1: सो ये दो चीज होती है, अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है,
0: जी
1: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और उसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है,
0: जी
1: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं।
0: जी
1: और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है,
0: जी
1: कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बाईपास करना सीखना पड़ता है, कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बाईपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी

0: होगा तो सेंसेशन काफी समय तक वापस
1: नहीं
0: चला जाता है और
1: होता
0: बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी, बिल्कुल।
0: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है।
1: जी
0: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं,
1: जी
0: क्योंकि नहीं तो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं।
1: जी, और सारा फोकस सारा ध्यान उसी पर रहता है कि
0: एब्सोल्युटली।
1: कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन के
0: और
1: लिए
0: फिर वो
1: चले
0: डर
1: जाए
0: सा रहता है कि अगर
1: जी
0: कपड़े में कुछ बूंदे हो
1: लग गई
0: गई
1: तो
0: और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है, स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई
0: दैट्स राइट।
1: बार
0: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है,
1: जी?
0: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है।
1: जी
0: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है।
1: जी
0: दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
0: जरूर। आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
1: जी,
0: और उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दो लाल,
1: क्या बात है
0: बाजीराव मस्तानी से।
1: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है,
0: जी
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना,
0: जी
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं।
0: जी जी
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड, उनकी मेटाबॉलिज्म
0: जी
1: एब्नॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है।
0: जी
1: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा हमको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा,
0: अरे इसलिए मत चेकअप
1: उसे चेकअप मत
0: कराओ
1: करवाओ।
0: जी जी
1: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है।
0: जी
1: कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है। लेकिन महत्व का ये हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
0: जी
1: सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी
1: आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है
0: जी
1: और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है।
0: जी
1: सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं।
0: जी
1: लेकिन एक बात हमें यह भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है।
0: जी
1: दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं।
0: ओ
1: क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं।
0: जी
1: सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी
1: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा।
0: जी जी
1: ये गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि
0: जी
1: हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें, आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की कुछ पान खाएं, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा हो के किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल।
1: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसे नहीं मानता है, लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है। ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डायट्री रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। लेकिन सब पेशेंट को डायट्री रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है।
0: जी जी, तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो
1: एक मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है।
0: बिल्कुल।
1: एट द सेम टाइम एवरीपैथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक। बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर ना हो, एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है।
0: जी।
1: बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है।
0: जी।
1: ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं वो एक बड़ा प्रश्न है।
0: बिल्कुल।
1: सो इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट।
0: जी, इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
1: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है। इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके इनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहां यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकेंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है। जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट, जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है।
0: जी, तो उसे पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुने।
1: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर
1: यहां
0: है?
1: मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी,
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल।
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है, उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इंपॉर्टेंट।
0: जी,
1: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
0: दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा। आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा।
1: ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इंप्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
2: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं।
1: जरूर।
2: प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
1: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है।
2: जी हाँ।
1: और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है। महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग कि जरूरी है या जरूरी नहीं है और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है।
2: जी,
1: अब हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है, कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।
2: जी, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
1: मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है। लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है। उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
2: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट, जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है, कम हो जाए?
1: काफी चीजें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है। प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है, पहले दवाइयां नहीं थी, अभी दवाइयां से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफी चेंजेस हुए हैं लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
2: जी बिल्कुल।
1: और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है।
2: जी, जी।
1: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
2: है।
1: सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं।
2: जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है या लाइलाज?
1: बहुत महत्व की बात आपने कही है।
2: जी
1: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते
2: जी,
1: हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है।
2: जी जी।
1: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है।
2: अच्छा।
1: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
2: जी।
1: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज रहता है तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोन इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोन ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है, और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं।
2: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
1: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन साबदन
2: चंचल चितवन।
1: चंचल चितवन
2: बेहतरीन गाना,
1: अच्छा
2: है।
1: गाना है
2: जी, मुकेश की आवाज में भी है,
1: मुकेश की आवाज में, लता जी की आवाज में भी है।
2: जी,
1: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज में सुनेंगे।
2: मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है, तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर,
0: जी
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन, या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है।
0: जी
1: जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन अवर बॉडी,
0: जी जी
1: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या पोटाशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, जो
0: जी
1: हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस।
0: जी
1: लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है, और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
0: जी जी
1: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
0: जी
1: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
0: जी
1: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है,
0: जी
1: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
0: जी जी
1: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
0: बिल्कुल
1: पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
0: जी
1: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है।
0: जी
1: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई, एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है,
0: जी
1: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं।
0: जी जी
1: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है
0: जी जी।
1: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है
0: जी।
1: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकेंड लाइफ मिलती है।
0: जी।
1: सो ये जानना बहुत जरूरी है।
0: जी।
1: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
0: जी जी।
1: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है, और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
0: जी जी, जी।
1: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी है। किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
0: जी।
1: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है।
0: जी जी।
1: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको। जो लोगों को पता नहीं है लेकिन टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन यहां दो तीन चीजें हैं। ऑफकोर्स लाइफ स्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं।
0: जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर।
1: एब्सोल्युटली
0: जी, तो अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाएं, कौन सा गाना?
1: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो।
0: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज़, पर्दे पर साधना, सुनते हैं ये गाना।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट
0: जी
1: ग्लैंड. हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है. लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं. कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं. किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है. अगेन, राइट टाइम में डिटेक्शन होना जरूरी है.
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है. क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती है, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए.
0: बिल्कुल
1: मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए, आप एक्सपर्ट को पूछिए.
0: जी
1: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है, वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए. अगर आपको डाउट है, जरूर सेकेंड ओपिनियन लीजिए. लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है.
0: जी
1: आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो.
0: जी
1: और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 एंड 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है. यह भी मैं जानता हूं कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है. जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट. सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है.
0: जी जी
1: लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर.
0: जी
1: सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग एंड टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप. आई थिंक दिस विल गिव अ गुड रोड मैप फॉर अ गुड हेल्थ, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रुशियल थिंग इन मॉडर्न टाइम.
0: जी
1: थैंक यू वेरी मच.
0: डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार
1: नमस्कार.
0: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: सेहतनामा,

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करगेट्टा। राज्य कैबिनेट की बैठक कल शाम 3 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से अदालत के आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन, वेतन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदे ने जामताड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण के घर हुई पुलिस छापेमारी को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के मामले को उठाने के कारण भाजपा नेताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने बोकारो समाहरणालय में राजस्व संग्रह, डीएमएफटी योजनाओं और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक की। आयुक्त ने वन, खनन, निबंधन, उत्पाद और नगर निगम चास सहित विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का जायजा लिया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर आरआईटी मोड़ के पास दिन दहाड़े एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। दो युवकों के आपसी विवाद में गंभीर रूप से घायल पीड़ित को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

दुनिया बधावासियों का मेला है। ये धक्के मारती दुनिया, ये कंधे चीलती दुनिया, ये दुनिया जिसमें ख्वाब टूटते हैं, ये दुनिया जिसमें लगती है दिल की खरोंचें। कभी कभी लगता है कि दुनिया की भीड़ से अलग हो कोई ऐसा अलग कोना जहां हम तुम साथ बैठ सकें और अपने दिल का राग छेड़ सकें, ऐसा कोना जहां हम खुद से मुलाकात करें और फिर बस वो लम्हे हमेशा के लिए खिल जाएं दिल की वादियों पर।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए।

आवाजों का कोई मजहब नहीं होता, आवाजें दुनिया की तमाम सरहदों के पार चलती हैं। हम सब महज एक शख्स नहीं, एक किरदार नहीं, आवाजें हैं हम। हम आवाजों की दुनिया के मुसाफिर, हमें कायम रहना है हमेशा एक आवाज की शक्ल बनकर। तुम्हारी आवाज गूंजती रहे कानों में जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे बांसुरी की मीठी तान, जैसे झरने की प्यारी मुस्कान।

तुम्हारी बातें गूंजती हैं हमेशा कानों में, गूंजती है तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान का एक सुर है जो इस कमरे में गूंजता रहता है हमेशा। तुम नहीं होती तब भी तुम होती हो अपनी सुरीली बोली बनकर। तुम्हारी आवाज को अपने कानों में सजा लेते हैं हम, और बस उसके बाद हमें दुनिया में किसी चीज की दरकार नहीं।

0: छाया गीत में आज थे भूपिंदर सिंह के कुछ बेमिसाल नगमे। फिल्मों के नाम थोड़ी सी बेवफाई,
1: आज बिछड़े हैं,
0: फिल्म मौसम,
1: ढूंढता है फिर वही,
0: फिल्म किनारा,
1: मेरी आवाज ही पहचान है,
0: और फिल्म दूरियां।
1: सामने
0: छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।

0: स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार श्रमिक साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त जया। बस आप पहुंची हूं आपके कार्यक्रम श्रमिक लोक में आपसे ढेर सारी बातें करने और कई जानकारियां साझा करने। तो आइए आप भी जुड़ जाइए आज के कार्यक्रम में,
1: और साथ में मैं रंजना भी उपस्थित है, तो स्वीकार करें मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों आपका कार्यक्रम श्रमिक लोक में। और अब जल्दी जल्दी से साथियों हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन नई नई जानकारियों के साथ हाजिर होते हैं, है ना जया?
0: हाँ रंजना, और कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के बारे में। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक अपोलो 11 मिशन की सफलता को याद करता है।
1: हाँ साथियों, हर साल 20 जुलाई यानी आज के दिन मनाया जाने वाला यह दिन 1969 में हुए उस ऐतिहासिक पल को सम्मान देता है जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था।
0: और नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखते हुए कहा, यह एक इंसान के लिए छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग।
1: और साथियों, बज एल्ड्रिन भी बहुत बाद में चंद्रमा पर उतरे और लगभग 2 घंटे चंद्र सतह पर रहे। यह चांद की खोज में एक ऐतिहासिक कामयाबी थी और इसे भविष्य के रिसर्च और खोज का रास्ता बनाया था।
0: इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण सहयोग और चंद्रमा के सतत अन्वेषण के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना है।
1: हाँ, और विभिन्न देशों द्वारा चंद्र अन्वेषण में की गई प्रगति और भविष्य के मिशनों जैसा नासा और आर्टेमिस और इसरो चंद्रयान पर चर्चा करना और चांद की खोज में सभी देशों की मिलीजुली तरक्की को दिखाना भी तो है।
0: और आज का दिन हमें यह भी सिखाता है कि भविष्य के मिशनों में योगदान देने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि अंतरिक्ष की खोज में शांति और सहयोग की भावनाएं सबसे आवश्यक है।
1: और साथियों, इस दिन को मनाकर हम बच्चों और युवाओं को बड़ा सोचने, वैज्ञानिक और अंतरिक्ष करियर अपनाने, भविष्य के मिशनों में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं।
0: साथियों, चंद्रमा दिवस सिर्फ इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है बल्कि यह भविष्य को अपनाने का भी दिन है। जैसे जैसे हम चंद्रमा की सतह पर

अस्थायी उपस्थिति की दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी हमें वैज्ञानिक खोज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवता की एकता का प्रतीक बनाता है। तो हम सब मिलकर चंद्रमा दिवस मनाएं और इस क्षेत्र में हमारे जो भी युवा साथी हैं आगे बढ़ें और इसमें अपना योगदान भी दें। तो हमें लगता है कि हम आगे और भी बातें करेंगे, इससे पहले हम अपने श्रमिक साथियों को सुनवाते एक खूबसूरत संगीत।

हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में है।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोशल मीडिया पर लाखों आदिवासियों के नाम मतदाता सूची से कटने की आशंका के दावे को पूरी तरह असत्य और भ्रामक बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चल रहे एसआईआर अभियान का एकमात्र उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम कई नई त्रुटि रहित मतदाता सूची में शामिल करना है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू आज से राज्य के 4 दिवस संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंचे हैं। वे 23 जुलाई तक पार्टी की विभिन्न समितियों और विधायकों के साथ मैराथन बैठकें करेंगे। प्रभारी के राजू ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को कम से कम 10 दिन और आगे बढ़ाने की मांग की है। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज जामताड़ा महाविद्यालय सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से छात्र छात्राओं को बाल विवाह, बाल श्रम, नशापान और पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न कानूनों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। हजारीबाग के सामाजिक संगठन यूथ विंग ने मॉनसून को देखते हुए शहर के 60 से अधिक ट्रैफिक पुलिस जवानों को रेनकोट उपहार स्वरूप दिए हैं। कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने विपरीत मौसम में भी यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने वाले इन जवानों के प्रति यह सम्मान व्यक्त किया। और कोडरमा पुलिस ने पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल डिक्की खोलकर जेवरात चोरी करने वाले अंतरराज्य गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि ओडिशा के जाजपुर से हुई इन गिरफ्तारियों के साथ ही चोरी के शत प्रतिशत जेवरात, मास्टर चाबी और बाइक बरामद कर ली गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारे श्रोता सुन रहे थे मुख्य प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में है।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। बंधुओं, गर्मी तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण रहता है, लेकिन किसान बंधुओं के लिए गर्मी का मौसम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। भीषण गर्मी, लू और तेज़ धूप, इनसे बचना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, फसलों का ख्याल रखना, यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान बंधु हैं।

खेतों में वो दिन रात मेहनत करके पूरे देश के लिए अन्न, फल, सब्जियों को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन गर्मियों का मौसम बंधुओं आप सबके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। मई जून के महीनों में तापमान कई क्षेत्रों में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक तक पहुंच जाता है। ऐसे में लंबे समय तक यदि धूप में काम किया जाए तो शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक यानी लू लगना, चक्कर आना, कमजोरी और त्वचा संबंधी कई समस्याएं, कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। कृषि कार्य को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता है बंधुओं, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि गर्मी से बचाव के लिए

करें। जे, इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद विश्राम लें और फिर कार्य करें तो इससे भी आप गर्मी से बच सकते हैं। लगातार काम करने के बजाय यदि हम 60 से 90 मिनट के बाद 10-15 मिनट का विश्राम ले लें तो ये अच्छा होता है। विश्राम के लिए पेड़ की छाव, शेड या किसी ठंडी जगह का उपयोग करना चाहिए। अब आता है कि शरीर में पानी और लवणों की कमी ना होने पाए। गर्मी में सबसे बड़ा खतरा शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का होता है, इसलिए प्यास लगने की प्रतीक्षा ना करें। कई बार शरीर में पानी की कमी शुरू हो जाती है बंधुओं, लेकिन प्यास महसूस नहीं होती है, इसलिए हर घंटे कम से कम 1 से 2 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। जी, और अपने साथ आप कुछ पेय पदार्थ रखें, क्योंकि अत्यधिक पसीना निकलने से शरीर में सोडियम, पोटेशियम और अन्य आवश्यक लवण जो पाए जाते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं पसीना के द्वारा, इसलिए इनकी पूर्ति करने के लिए आप अपने साथ नींबू पानी रखें, छाछ रखें, नारियल पानी रख सकते हैं, सत्तू का शरबत रख सकते हैं, बेल का शरबत रख सकते हैं और पानी ये अवश्य ही अपने साथ रखें और इसका नियमित सेवन करते रहिए। खेत में काम करते समय हमेशा पानी की बोतल अपने साथ रखें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप पानी पी सकें। जी, यानी पानी लेना चाहिए। निर्जलीकरण यदि शरीर में है तो उसके संकेत मिलते हैं, उसे आपको पहचानना चाहिए। बंधुओं, यदि किसी व्यक्ति को कुछ लक्षण हैं, अगर वैसा लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, जैसे अत्यधिक प्यास का लगना, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, कमज़ोरी महसूस होना, मुंह का बार बार सूखना, इस तरह यदि आपको लग रहा है तो आपको समझना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी हो रही है। जी, और ये शुरुआती संकेत होते हैं, आप इसे पहचानें। संतुलित खान पान अपनाएं। गर्मियों में शरीर को ठंडा और ऊर्जावान रखने के लिए सही भोजन बेहद ज़रूरी है। हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तला भुना, अत्यधिक मसालेदार या फिर भारी भोजन शरीर में गर्मी बढ़ा देता है। इसके बजाय आप हल्का और पौष्टिक भोजन लें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। मौसमी फलों का सेवन कीजिए। जी, गर्मी के मौसम में प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो आपके खेत में ही उपलब्ध हैं, आपके घर में ही उपलब्ध हो सकते हैं। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, पपीता, संतरा, आम, तो आप इन सब का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी भी होता है और पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अपने भोजन में आप हरी सब्जियों को अवश्य ही शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, तुरई, परवल, टिंडा, ये शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, इसलिए इनका सेवन करना चाहिए। और प्याज का महत्व तो आप सब जानते ही हैं बंधुओं। हमारे पुराने समय से ही हमारी दादी नानी कहा करती थी कि जब भी बाहर निकलो प्याज साथ में रखो। जी हाँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से प्याज को लू से बचाव के पारंपरिक उपाय के रूप में अपनाया भी जाता है। भोजन के साथ आप प्याज का सेवन करें। यदि आप प्याज लहसुन खाते हैं तो अवश्य ही प्याज को अपने भोजन में शामिल करें। और सबसे ज़रूरी बात कि घर से बाहर जब भी निकलें, चाहे वह सुबह ही क्यों ना हो, आप भोजन करके ही निकलें, यानी कुछ ना कुछ खाकर ही निकलें। सुबह निकल रहे हैं तो हल्का फुल्का सुपाच्य नाश्ता ले लें। खाली पेट धूप में काम करने से कमज़ोरी आती है, चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए खेत में जाने से पहले यानी काम में निकलने से पहले आप पौष्टिक भोजन नाश्ता अवश्य ही करें। जी, और अब बारी आती है कि आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। गर्मी में अपने पहनावे का ध्यान रखिए। सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनिए। सफ़ेद, हल्के नीले रंग ये गर्मी में अच्छे माने जाते हैं। ढीले वस्त्र होना चाहिए। सूती कपड़े शरीर को ठंडक देते हैं। और जब भी बाहर निकलें सिर को अवश्य ढकें। धूप सीधे सिर पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सीधे सिर पर धूप पड़ने से शरीर का तापमान

तेजी से बढ़ता है, इसलिए आप सिर को ढककर रखें, चाहे वो गमछे से, तौलिए से ढककर रखें, टोपी पहने, पगड़ी पहने, या फिर आप टोपी कपड़े के जो गमछे बनाए जाते हैं उसकी टोपी बनाई जाती है उसका प्रयोग करें, लेकिन सर को अवश्य ही ढकें, छाते का प्रयोग करें। चेहरे और गर्दन की भी सुरक्षा का ध्यान रखें, स्कार्फ से गर्दन और चेहरे को ढकें या गमछे से ढकें, और जिससे आपके नाक को भी आप बांध कर रखें ताकि उसमें धूल के कण, गर्म हवा और धूप सीधे आपके चेहरे पर ना पड़े। आँखों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, तेज़ धूप आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छी गुणवत्ता वाले धूप के चश्मे का आप उपयोग कर सकते हैं, ये काफ़ी लाभदायक होता है। नंगे पैर खेत में काम करने से ज़मीन की जो गर्मी है, कीड़े मकोड़े, कांटे, इन सब का संक्रमण होने का खतरा बना रहता है, इसलिए जूते या गम बूट का उपयोग आप कर सकते हैं। लू से बचाव और प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, आइए यह भी जान लेते हैं। बंधुओं, लू गर्मियों की सबसे खतरनाक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, हमें पता ही नहीं लगता है और लू लग जाती है। जी हाँ, जैसे ही सर्द जगह से हम गर्म जगह में जाते हैं, या कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम घर में ठंडे वातावरण में हैं और अचानक ही धूप में निकल जाएं तो भी लू लग सकती है, जिसे हम लहर लगना भी कहते हैं ग्रामीण भाषा में। तो लू से बचाव के लिए आप उपाय करें। लू के लक्षण के बारे में हम जान लेते हैं। यदि लू लग गई है तो तेज़ बुखार ऐसा महसूस होगा, शरीर अत्यधिक गर्म हो जाएगा, तेज़ सिर में दर्द होगा, चक्कर आने लगेगा, उल्टी या मतली जैसे महसूस होने लगेंगे और बेहोशी की हालत भी हो जाती है कई लोगों को। तो यदि किसी को लू लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए? आप कोई बाहर खेत में काम कर रहा है, उसे बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसे तुरंत ही छायादार ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके कपड़ों को थोड़ा ढीला करें, शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें और वहाँ पर खुले हवा की व्यवस्था रखें, और यदि वो होश में है तो फिर उसे पानी पीने को दें, ORS का घोल है तो उसे पीने को दें, और स्थिति गंभीर है तो तुरंत आप चिकित्सक के पास लेकर जाएं, अस्पताल से संपर्क करें। इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। त्वचा और आँखों की सुरक्षा, सनबर्न से बचाव। लगातार धूप में रहने से त्वचा हमारी झुलस जाती है। खेतों में जाने से पहले आप शरीर को ढकें, ऐसा तो हम बार बार आपसे कहते हैं, और इसके साथ ही अत्यधिक पसीने के कारण त्वचा पर संक्रमण और खुजली की समस्या हो सकती है। तो जब आप काम से घर में आएं तो अपने शरीर को अच्छी तरह से पोंछें, साफ करें और उसे सूखा रखें। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। खेत से लौटने के बाद साफ और ठंडे पानी से आँखों को धोएं, आँखों में छींटे मारें, इससे धूल और गर्मी से होने वाली जलन से राहत मिल जाएगी। खेतों में यदि हमारे बुज़ुर्ग किसान और महिलाएं काम करती हैं तो उनके लिए तो विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को अत्यधिक समय तक धूप में नहीं रहना चाहिए, उन्हें पानी और दवाइयों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को भी पर्याप्त पानी पीना चाहिए और लंबे समय तक तेज़ धूप में कार्य करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और अत्यधिक गर्मी में भारी श्रम करने से बचना चाहिए, और जो पहले से बीमार हैं उन्हें तो बिल्कुल भी बाहर धूप में काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिनका BP उच्च होता है, डायबिटीज की समस्या होती है, हृदय रोग से ग्रसित होते हैं, किडनी से संबंधी समस्या होती है, उन्हें विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हें अपने दवाइयों का भी सेवन करते रहना चाहिए, अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार काम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, यानी संतुलन बनाकर काम करना चाहिए। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं उसका ख्याल रखें। खेतों में जाएँ तो अपने साथ कुछ चीज़ों को लेते जाएँ, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि पेय पदार्थ रखें और एंटीसेप्टिक दवाइयाँ रखें, कॉटन रखें, छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे BP की दवाइयाँ हो, ये सब भी अपने साथ ले जाएं, जिससे यदि ज़रूरत पड़े तो आप खेत में ही अपना छोटा मोटा उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखकर अपना ख्याल रख सकते हैं।
क्योंकि कहते भी है ना कि पहला सुख निरोग

0: रोगी काया। तो ये हमारे किसान बंधुओं पर पूरी तरह से लागू होती है। किसान स्वस्थ रहेंगे तभी खेतों में बेहतर उत्पादन होगा, देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। भीषण गर्मी लू के इस मौसम में थोड़ी सी सावधानी, पर्याप्त पानी, संतुलित आहार, उचित पहनावा और समय पर आराम किसानों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकता है। इसलिए बंधुओं, आप हमारे अन्नदाता हैं, देश की बड़ी शक्ति हैं, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। तो यदि आप सुरक्षित हैं तभी हम भी सुरक्षित हैं, हमारा देश भी सुरक्षित है। तो ये तो हुई स्वास्थ्य संबंधी बातें जो हमें अपने लिए किसान बंधुओं को करना चाहिए।
1: ग्रामीण भाइयों, आज हम बातें करेंगे फल उद्यान की, और विशेषकर पलामू जिला में या फिर गढ़वा लातेहार में अमृत की खेती हमारे ग्रामीण बंधु आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि हम अमृत की सघन बागवानी कैसे करें। इस संबंध में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार आपको और श्रोता बंधुओं को।
1: सर्वप्रथम तो बताया जाए हमारे ग्रामीण भाइयों को कि अमृत की खेती के लिए जो चुनाव वो करते हैं वो कैसा है।
2: देखिए संतोष जी, पहले क्या होता था कि लोग शौकिया तौर पे अमृत की फसल लगाते थे और यह ट्रेडिशनल फल था, लेकिन आज के समय में अमृत एक व्यापारिक फल है
1: जी।
2: व्यापारिक फल, मेरा कहने का मतलब है, फल का मतलब ऐसे फसल से है जिसपे दिन प्रतिदिन इसको जब हम मार्केट में लाएं तो ये तुरंत का तुरंत बिक जाए
1: जी।
2: अमृत के केस में सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज के समय में डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा फल है, रफेज जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो विभिन्न तरीका के रोगों में जो फल वर्जित है वहाँ पे अमृत को आसानी से लोग लेते हैं, डॉक्टर भी सलाह देते हैं, विटामिन सी की प्रचुरता है। इसके साथ ही साथ इसकी खेती सालों भर हो सकती है और सालों भर मार्केट में इसका डिमांड होता है। इसका कभी भी प्राइस आपको 30-40 रुपये से नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो आज के समय में यह एक व्यापारिक फसल बन चुका है। और जहाँ तक हम लोग इसकी खेती के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में बोलेंगे, तो बहुत पहले से 17वीं शताब्दी से इसका, चूंकि ये बाहर से आया हुआ फल है, लेकिन यहाँ इंडिया में इस तरीका से रच बस गया है कि लगता है जैसे यहाँ का ही ये ओरिजिन है। और ढेर सारी वैरायटी है
1: जी।
2: जो कि यहाँ पे है, जैसे इलाहाबाद सफेदा, सरदार, ललित, इसी तरीका से ढेर सारा वैरायटी है जो कि रच बस गया है और लगता है कि ये इंडिया का ही फसल है।
1: फसल है जी। ऐसे ये मूलतः है कहाँ का?
2: मूलतः यह अमेरिका का है।
1: अच्छा।
2: अमेरिका महादेश का फसल है और 17वीं शताब्दी में जैसे पपीता यह सब के साथ पुर्तगालियों के द्वारा ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका हुआ है।
1: और ऐसे भी हमारे ग्रामीण भाई बहन एक ना एक पौधा अपने घरों में, जो नहीं भी शौक रखते हैं उनका लगा हुआ रहता है अमरूद का पौधा। और हम समझते हैं कि अगर इसकी खेती की जाए तो निश्चित रूप से व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी आमदनी हमारे ग्रामीण भाई बहन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी खेती की शुरुआत कैसे करेंगे?
2: आज हम लोग इसकी सघन बागवानी पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सघन बागवानी का मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पहले हम लोग एक एकड़ में बहुत कम पौधे लगा पाते थे, मुश्किल से 100-150 पौधे लग पाते थे, आज के समय में वो 2000 तक हम पौधे लगाने में सक्षम है।
1: अच्छा।
2: दूसरा चीज क्या है कि पहले जो नॉर्मल हम लोग प्लांटेशन करते थे उसमें फल आपका 2-2.5 मीटर ऊपर पौधा जाने के बाद होता था, लेकिन आज जो सघन बागवानी में हम करते हैं उसमें पौधे की ऊंचाई मुश्किल से 1 मीटर जाती है।
1: अच्छा।
2: तो जो ग्रामीण महिलाओं का कृषि में जो हम लोग इन्वॉल्वमेंट कहते हैं तो ज़्यादा बढ़ेगा और महिलाएं ज़्यादा पैसा भी खेती के माध्यम से अपने आप को संबल बनाती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है और दिन रात इसमें आराम से मेहनत करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि हाइट कम है, नीचे मुड़ बैठ करके काम करना है। तो सघन बागवानी में इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है और सालों भर इसका फल बाजार तक पहुँचाने का मुख्य उद्देश्य है
1: जी। जी। तो कौन कौन से प्रभेद का चुनाव करें हमारे किसान भाई, खेतों की तैयारी कैसे करें?
2: खेत जब हम लोग इसके सघन बागवानी की बात करते हैं तो जहाँ पहले हम लोग इसको 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर बाय 5 मीटर पे लगाते थे, आज इसकी दूरी को कम करके हम लोग लाइन से लाइन 2 मीटर और पौधा से पौधा 1 मीटर रखने की स्थिति में आ गए हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसमें क्या है कि पहले गड्ढा करने में भी या गड्ढा भरने में भी समय ज्यादा लगता था, आज यदि हमको कहीं पे भी अमृत की बागवानी करनी है तो जमीन

0: देखिए कभी भी ज्यादा मायने नहीं रखता है कि कैसा जमीन है।
1: जी
0: उस जमीन को कम से कम 2 बार 3 बार आप जुताई कर दें, 1 बार 2 बार गहरी जुताई कर दें, और उसको यदि हम प्लेन कर दें और इसके बाद जैसे मेड़ ऊंचा करके और 2-2 मीटर के बाद हम लोग 50 सेंटीमीटर चौड़ाई में इसका ऊंचा कर दें और पौधा को 1-1 मीटर की दूरी पर लगा दें, बीच में फिर आप आने जाने जैसा रास्ता छोड़ दें
1: जी
0: और 2 मीटर के बाद फिर पौधा लगा दें। तो पौधा लगाने के लिए आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है।
1: अच्छा
0: सबसे पहले हम लोग को दिमाग में बात डालना है कि चूंकि पौधा बच्चा है और इसका क्या है, हमको ज़्यादा ऊंचा तक लेकर जाना नहीं है, तो
1: जी
0: ज़्यादा ऊंचा लेकर नहीं जाना है तो इसमें ज़्यादा हमको खाद पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है।
1: नहीं जी
0: लेकिन फिर भी हम लोग को जहाँ पे अमरूद लगाना है इसका यदि हम लोग लाइनिंग तैयार कर लेते हैं तो हर एक जहाँ पे पौधा लगाना है उस जगह पे मात्र 1.5 से 2 kg हर एक गड्ढा के अनुसार आप पूरा सड़ा हुआ गोबर खाद प्रारंभ में और 90 ग्राम यूरिया, 45 ग्राम पोटास मिला करके गड्ढा में हम लोग रखते चले जाएंगे।
1: अच्छा
0: और जो गड्ढा हम बनाए इसका हमको ये कोशिश करना है कि जैसे बरसात आ गया, लेआउट हम लोग अभी कर लिए, लेकिन बरसात आ गया जुलाई, हम लोग जुलाई में घास जैसे उस खेत के एरिया को उस जहाँ पे रखना है घास मुक्त हो कम से कम।
1: अच्छा
0: तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि लास्ट अगस्त में पौधा लगाएं,
1: अच्छा
0: क्योंकि जो भी पौधा हम लगा रहे हैं चूंकि थोड़ा कॉस्टली पौधा है, जैसे इसके लिए हम लोग चुनाव करते हैं थाई पिंक या VNR की है ये प्रजाति जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी से इम्प्रूव किया हुआ टिश्यू कल्चर वाला पौधा है, तो उस पौधे का यदि व्यावसायिक खेती हम कर रहे हैं तो उसका चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्रेडिशनल है जैसे इलाहाबाद सफेदा, ललित, उसका भी हम इसमें लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो इम्प्रूव वेराइटी हुई जैसे थाई पिंक की मैं बात किया, VNR की मैं बात किया, उसके उसके फलन में और जो हमारा ट्रेडिशनल ए है प्रभेद उसमें फलन में देखिए जो प्रोडक्शन होगा थोड़ा अंतर पड़ता है। अंतर पड़ता है जैसे कि उसमें 1 साल के बाद जहाँ आप 1 kg लेंगे, ट्रेडिशनल हम जो अपना लगाते हैं उसमें 700 से 800 ग्राम, मतलब 25% का आपको कमी देखने को मिला है अभी रिसर्च के माध्यम से, और लॉन्ग ड्यूरेशन में और फिर एक गैप हो जाता है। जैसे एक पौधा में उसमें 20 kg तक हम लेंगे, ये हमारा 12-14 kg तक प्रत्येक पौधा में रह जाता है 5 साल के बाद। लेकिन इनिशियल इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, चूँकि जो एक टिश्यू कल्चर पौधा है यदि आप लॉट में ज़्यादा मंगाते हैं तो इसका मूल्य कम पड़ता है, 90-100 रुपये तक पड़ेगा। हो सकता है ज़्यादा लॉट में मंगाए या हमारा हम लोग जो किसान भाई ज़्यादा समूह में इकट्ठा होकर के पौधा का डिमांड करें, जैसे ये आंध्रा के से पौधा जनरली आती है तो वो कम पड़ेगा 40-50 तक, तो इनिशियल कॉस्ट इसमें पौधा में ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हमको 2,000 पौधा लगाना है,
1: जी
0: तो इनिशियल कॉस्ट उसमें लग जाता है ज़्यादा, खाद में ज़्यादा खर्च नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है।
1: अच्छा, तो प्रतिवर्ष वो फल देगा।
0: इसमें क्या है कि 7 महीने के बाद जैसे आप पौधा आज लगा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पौधा बढ़ना शुरू हुआ तो हम लोग उसके वेजिटेटिव ग्रोथ को जैसे पत्ती वगैरह निकलता है उसको तुरंत चेक करेंगे,
1: अच्छा
0: 4 महीने के बाद उसको काट देंगे, प्रूनिंग कर देंगे। तो प्रूनिंग करने से क्या होगा कि वो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाएगा,
1: अच्छा
0: रिप्रोडक्टिव फेज मेरा कहने का मतलब फलन में चला जाएगा। लेकिन जब हम रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो किसान भाइयों को, खासकर पलामू के किसान को मेरा ये सलाह रहेगा कि जो 7 महीने के बाद जो फूल वगैरह आता है उसको हटा देने का मैं सुझाव दूंगा, कम से कम 1.5 साल का पौधा हो तब उन्हें फल लेने का मैं सुझाव दूंगा। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जमीन जो है थोड़ा कम उपजाऊ है और हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें गड्ढा खोद करके ज़्यादा पौधा देने रहे, तो यदि हम ज़्यादा उसमें लगाते हैं तो उसके भार को सहेगा नहीं, जहाँ तहाँ क्रैकिंग होने लगेगा, तो उसके स्ट्रक्चर को, चूंकि हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल में 70-80 सेंटीमीटर जाने के बाद हम लोग छटनी करते थे, यहाँ क्या करते हैं कि जैसे ही पौधा सीधा 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर को हुआ तो 40 सेंटीमीटर के बाद ऊपर से हम पौधा को कट कर देते हैं, ऊपर का पौधा कट कर देते हैं और उसके बाद नीचे से जो शाखा निकलती है वो फिर बढ़ती है, उस पौधे को भी 3-4 महीने के बाद हम कट कर देते हैं। तो इस दौरान चूंकि पौधे की पेंसिल थिकनेस का पौधा रहता है उसको मोटा होने का समय मिल जाता है।
1: समय मिल जाता है जी।
0: तो समय जब

0: ज़्यादा मिल जाता है तो आगे हमारा जैसे नॉर्मल जहाँ 10 वर्ष 15 वर्ष तक हम आसानी से बिना मेहनत के भी, आगे जो मेहनत चाहिए उसके मेहनत के भी हम आराम से हमारा फलन होते रहेगा।
1: कितने वर्षों तक हम इसे फल ले सकते हैं?
0: जब हम इस तरीके का सघन खेती की बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में 15 से 20 साल आप आराम से ले सकते हैं।
1: अच्छा,
0: हो सकता है कि 15 से 20 साल के बाद हम इसमें फिर से खेत की पूरी गाढ़ी जुताई करना पड़े, पौधे में किसी तरीके का रोग संक्रमण हो, उसको बाद में चूंकि होता क्या है कि सघन होने के बाद उतना मेंटेन हो नहीं पाता है, तो उसके चलते ढेर सारी बीमारियां भी आने की संभावना रहती है। लेकिन यदि मेंटेन किया जाए तो 15-20 वर्ष तक इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आगे इसके सालों भर के मेंटेनेंस पे, किसान भाइयों के मेंटेनेंस पे इसका उम्र डिपेंड करता है।
1: अमरुद की सघन बागवानी पर हम बातें कर रहे हैं किसान भाइयों, और इससे छुड़ी कोई संक्षिप्त बातें
0: किसान भाइयों को जो सबसे पहला ध्यान देना है कि जो मैं पहले बताया कि पहला कटिंग 4 महीने के बाद करेंगे, और उनको हमेशा ये कोशिश करना है कि फिर जब चारों तरफ से जो शाखा निकलेगी 4 महीने बाद उसको फिर हम 20-30 सेंटीमीटर का होता है जो उसकी लंबाई 4 महीने में बढ़ गई, तो जितना लंबाई उसका जो शाखा निकला 4 महीने में बढ़ा।
2: और अब हम बातें कर लेते हैं जो फसल अवशेष होता है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, और बार बार हम इस बारे में आपको बताते भी हैं। चलिए जान लेते हैं कि फसल अवशेषों का प्रबंधन कैसे करें। हमारे देश में फसलों की कटाई के बाद बड़ी मात्रा में फसल का अवशेष बचता है, पुआल, भूसा, डंठल, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। इन अवशेषों का यदि हम उचित प्रबंधन ना करें तो कृषि की स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनेक क्षेत्रों में किसान फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आती है और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। फसल अवशेष है क्या, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। बंधुओं, फसल कटाई के बाद खेत में बचा हुआ पौधों का भाग, जैसे धान की नरवाई, गेहूं का ठूंठ, मक्का के डंठल, गन्ने की पत्तियां, ये सब फसल अवशेष कहलाते हैं और कृषि उत्पादन के ये महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। जी हाँ, तो फसल अवशेष यदि जला दिया जाए तो इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। वायु प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, मिट्टी के लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं जलकर, मिट्टी की उर्वरता, जैविक कार्बन की मात्रा घटती है, मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और धुएं के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, दृश्यता में कमी आ जाती है, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। जी, तो फसल अवशेषों का प्रबंधन आवश्यक है, इसका उपाय करना चाहिए। मल्चिंग, बंधुओं, फसल अवशेषों को खेत में फैलाकर मिट्टी की सतह को ढक दिया जाता है, इससे नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी के तापमान का संतुलन बना रहता है। कंपोस्ट निर्माण, फसल अवशेषों से जैविक खाद तैयार की जा सकती है, इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ते हैं, रासायनिक उर्वरकों का निर्भरता कम होती है। जी, वर्मी कंपोस्ट, बंधुओं, केचुओं की सहायता से फसल अवशेषों को उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, पशु चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी जो अवशेष होते हैं। बंधुओं, कई फसलों के अवशेष पशुओं के लिए पोषक चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैव ऊर्जा उत्पादन, इसमें भी प्रयोग किया जा सकता है, फसल अवशेषों से बायोगैस, बायो एथेनॉल, बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सकती है। कृषि यंत्रों का उपयोग, बंधुओं, हैप्पी सीडर, सुपर एस्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, रोटावेटर, मल्चर, रीपर कंबाइंडर, ऐसे यंत्रों की सहायता से अवशेषों का खेत में ही हम प्रबंधन कर सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन से क्या लाभ होता है, आइए यह भी जान लेते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, जल संरक्षण में सहायता मिलती है, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है, उत्पादन लागत में कमी आती है, फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है, किसानों की अतिरिक्त आय के अवसर बढ़ जाते हैं।

केंद्र और राज्य सरकारें भी फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान कर रही हैं। साथ ही विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को अवशेष न जलाने और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। आप उस पर ध्यान दें और उसे अपनाएं। कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि फसल अवशेष कृषि के लिए बोझ नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान संसाधन है। इनके वैज्ञानिक प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि संभव है। इसलिए किसानों को चाहिए कि फसल अवशेष जलाने के बजाय आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाकर सतत कृषि की दिशा में योगदान देना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, फसल अवशेष को ना जलाएं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं, पर्यावरण बचाएं। तो ये तो हुई बातें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। बंधुओं, गर्मी के मौसम में हमारे जो पशुधन है उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके खान पान का, उनके स्वास्थ्य का, उनके पोषण का उचित प्रबंधन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पशुधन स्वस्थ रहते हैं और हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात होती है। बंधु, हमारा देश ऐसा है कि गर्मी का मौसम पशुपालकों के लिए एक चुनौती के रूप में आता है। जी, जो ये गर्मी का मौसम होता है चुनौतीपूर्ण होता है। अप्रैल से लेकर जून के बीच तापमान बढ़ते हैं, तेज़ धूप होती है और लू चलती है, जो पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। बंधुओं, अत्यधिक गर्मी के कारण पशु ऊष्मा तनाव का शिकार हो जाते हैं, जिसे हम हीट स्ट्रेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उनकी भूख कम हो जाती है, पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है और दूध उत्पादन में कमी आने लगती है। ऐसे समय में पशुओं के उचित खान पान, पर्याप्त पानी, संतुलित पोषण, इन सब का ध्यान रखना चाहिए, जिससे पशुओं को हम स्वस्थ रख सकें। गर्मी का पशुओं पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में पशुओं के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर को ठंडा रखने के लिए वो अधिक सांस लेते हैं और पसीने के माध्यम से पानी और खनिज लवण को खो देते हैं, और इसके कारण चारा खाने की मात्रा कम हो जाती है, दूध उत्पादन में गिरावट होने लगती है, वजन घटने लगता है, रोगों का खतरा बढ़ जाता है, प्रजनन क्षमता उनकी प्रभावित होती है और हमारे पशु सुस्त और कमज़ोर दिखाई देने लगते हैं। इसलिए बंधुओं, गर्मियों में पशुओं के आहार का प्रबंधन करना और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले पीने के पानी का उचित प्रबंधन करना चाहिए। गर्मी के मौसम में पानी पशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना गया है और पोषक तत्व होता है। पशुओं के शरीर का तापमान पशुओं के शरीर का लगभग 60-70% भाग पानी से बना होता है। ध्यान रखने वाली बातें हैं, पशुओं को हमेशा स्वच्छ, ताज़ा और ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। दीजिए, दिन में कम से कम 3-4 बार पानी पिलाना चाहिए। दूध देने वाले जो पशु हैं उनको आवश्यकता अनुसार 60-100 लीटर तक प्रतिदिन पानी देना चाहिए। जी, जो भैंस हैं, गाय हैं, उनको 60-100 लीटर तक पानी प्रतिदिन देना चाहिए, इतनी आवश्यकता होती है। पानी की नाद को छायादार स्थान पर रखें, यानी कि पानी गर्म ना होने पाए, और जहाँ पे आप अपने पशु रखते हैं वहाँ भी उचित प्रबंधन होना चाहिए ताकि उन्हें धूप ना लगे। नाद की आप नियमित सफाई करें, पानी को दूषित ना होने दें। अत्यधिक गर्मी में पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट घोल मिलाकर भी दे सकते हैं। पर्याप्त पानी मिलने से पशुओं के शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, दूध उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हरे और रसदार चारे के महत्व पर भी ध्यान दें। गर्मियों में सूखे चारे की अपेक्षा हरा चारा अधिक लाभदायक होता है। इसलिए बंधुओं, क्योंकि पानी की मात्रा उसमें अधिक होती है और आसानी से वो पच भी जाता है, इसलिए आप हरे चारे का प्रबंधन करें तो ज़्यादा अच्छा है। हरा चारा में आप मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास, लोबिया, बरसीम का संरक्षित चारा, गिनी घास, ये सब कुछ दे सकते हैं। हरा चारा खिलाने के लाभ हैं, आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसान भाई बहन, पशुओं के शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए और हरा चारा पानी की कमी को रोकता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करता है, दूध उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। हरे चारे को काटकर यानी कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिए। यदि चारा सड़ा हुआ है, फफूंद लगा हुआ है, तो उसे कभी भी आप अपने पशुओं को खाने के लिए ना दें। चारे को छायादार स्थान पर सुरक्षित रखें और जब भी उन्हें दें साफ और स्वच्छ चारा दें। संतुलित दाना और ऊर्जा युक्त आहार भी देना चाहिए। गर्मी में पशु कम मात्रा में चारा खाते हैं, इसलिए उनके आहार में पोषक तत्वों की सघनता बढ़ानी चाहिए।
संतुलित दाना मिश्रण को शामिल कीजिए। मक्का, जौ, गेहूं चोकर, सरसों खली, सोयाबीन खली, मूंगफली खली और दालों के चूरे। दाना खिलाने की सही जो खिलाने का सही समय है, सुबह जल्दी दीजिए और शाम या फिर रात के समय दीजिए। दिन के सबसे गर्म समय में दाना देने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय पशुओं की खाने की इच्छा कम होती है। दाने या भूसे को पानी में 20 से 30 मिनट भिगो कर रखिए और उसके बाद दीजिए। इससे स्वाद बढ़ता है, पाचन बेहतर होता है और पशु अधिक मात्रा में आहार ग्रहण कर लेते हैं। खनिज लवण और विटामिन की पूर्ति। बंधुओं, गर्मी में पसीने और अधिक सांस लेने के कारण पशुओं के शरीर से खनिज लवणों की हानि होती है, इसकी पूर्ति करना भी आवश्यक है। प्रति पशु प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर दीजिए, जिसमें 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर हो, 25 से 30 ग्राम सामान्य नमक हो। इसे आहार में आपको मिलाना चाहिए। इससे लाभ होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, दूध उत्पादन बेहतर होता है, प्रजनन क्षमता में सुधार होता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहता है। विटामिन पूरक भी देना चाहिए, विशेषकर विटामिन ए, डी और ई पशुओं के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार पूरक आहार दिया जाना चाहिए। मीठा सोडा, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। गर्मी में पशुओं के पेट में अम्लता बढ़ जाती है, जिससे पाचन प्रभावित होता है। आहार में सीमित मात्रा में मीठा सोडा मिला देने से जुगाली अच्छी होती है, पाचन सुधरता है, एसिडिटी कम होती है और दूध उत्पादन बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसका उपयोग आप जब भी करें, पशु चिकित्सक या विशेषज्ञ की सलाह लें और फिर उनके अनुसार ही आप इसका उपयोग करें। अपने मन से आप कुछ भी ना करें। अब लू से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए विशेष आहार की आवश्यकता है। गर्मी के मौसम में कुछ पारंपरिक और उपयोगी आहार पशुओं को लू से बचाने में सहायक होते हैं। जौ का दलिया, गेहूं का चोकर, चने का छिलका, दलहन चूरी यानी दलहन का चूरा, इन सब को आप रात में पानी में भिगोकर सुबह खिलाएं, ये लाभदायक होता है। बंधुओं, कभी कभी पानी में थोड़ी मात्रा में आप गुड़ मिलाइए, इलेक्ट्रोलाइट मिलाइए और पशुओं को ऊर्जा और खनिज के रूप में ये प्रदान कीजिए। गर्मी के अंतिम चरण में कई क्षेत्रों में हरे हरे चारे की कमी हो जाती है, ऐसे में साइलेज का उपयोग कीजिए। साइलेज हरे चारे को संरक्षित करके बनाया जाता है और वर्ष भर पौष्टिक आहार ये उपलब्ध करा देता है। कम पानी और कम जगह में उगाया गया हाइड्रोपोनिक चारा पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, ये विकल्प के रूप में आप ले सकते हैं। भूसे का पोषण यानी यूरिया उचित उपचारित भूसा

0: गुड़ मिश्रित भूसा और मिनरल मिश्रित युक्त भूसा आप ये दे सकते हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराइए अपने पशुओं को। संतुलित पौष्टिक आहार दीजिए। पशुओं को छायादार स्थान पर रखिए। दोपहर में सीधे धूप में उन्हें ना बांधिए। पंखे पानी के छिड़काव की व्यवस्था कीजिए और नियमित टीकाकरण कृमिनाशक दवाइयों का प्रयोग अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार कीजिए। दूध देने वाले पशुओं को अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन युक्त आहार भी दीजिए। गर्मी में बासी सड़ा फफूंद युक्त चारा बिल्कुल ना खिलाएं। ये तो कभी भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने पशुओं को दाना देते हैं, भोजन देते हैं, चारा उपलब्ध कराते हैं, तो उन्हें अच्छा ही दीजिए। चारे को लंबे समय तक खुले में ना छोड़िए। पशुओं को दोपहर की तेज़ धूप से बचाइए। पशुशाला में उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। पशुओं को समय समय पर नहलाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कमजोरी, भूख में कमी या तेज सांस की समस्या दिखाई दे रही है तो तुरंत अपने चिकित्सक यानी पशु चिकित्सक से आप संपर्क कीजिए, अपने पशुओं का इलाज करवाइए। कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि गर्मी का मौसम पशुओं के लिए कठिन समय होता है। जैसे कि हम मानव के लिए होता है, वैसे ही पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए भी होता है। हमारे घर में जो पशु हैं उनका हमें ही ध्यान रखना है, इसलिए उनके सही खान पान उचित प्रबंधन के माध्यम से हम उनको दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। स्वच्छ और पर्याप्त पानी, हरे चारे की व्यवस्था, संतुलित दाना, खनिज लवण, विटामिन की उचित मात्रा पशुओं को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पशुपालक गर्मियों में पोषण और उचित देखभाल संबंधी उपायों को अपनाते हैं तो फिर पशुओं को हम लू से बचा सकते हैं और इस प्रकार हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे, दूध उत्पादन भी अच्छा होगा, उनकी कार्यक्षमता बनी रहेगी और सब स्वस्थ पशु ही समृद्ध पशुपालक की आधारशिला है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, ये तो हो गई पशुओं से जुड़ी हुई बातें, यानी उनके स्वास्थ्य, उनके खान पान, रहन सहन की बातें। तो ये तो हुई बातें और आइए अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मृदा की। जी हाँ किसान बंधु, हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है और इसके साथ ही जल धारण क्षमता जो है भूमि की वो भी निम्न स्तर पर जा चुकी है। कई तरह की तकनीकियां कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेतों खलिहानों में उतारी गई है, उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। और आज मृदा एवं जल संरक्षण से संदर्भित विस्तृत बातें जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार, झारखंड के सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार और प्रणाम।
1: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों के सामने जो प्रमुख मुद्दा है इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि मृदा की जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो क्षीण होती जा रही है, उर्वरा शक्ति जो कम होती जा रही है, साथ ही जल धारण क्षमता जिसमें काफी गिरावट आ चुकी है, हमारे किसान भाई इसका निदान कैसे करें?
2: किसान भाई, सबसे पहले तो हमारे प्रकृति के द्वारा जो है मिट्टी और जल का जो प्राकृतिक संसाधन जो मिला हुआ है, ये जो है अनमोल है। इसको सिर्फ इसकी रक्षा की जा सकती है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, इसका उत्पादन नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: ये जो है हमारे प्रकृति में बहुताय में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसके जो है गुणवत्ता और इसके जो है उपयोग में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई जाती है, जिसके चलते जो है इसमें भारी कमी आई है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षीण होने का एक प्रमुख कारण है कि जैसे बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जो है पानी बहता है, तो पानी के साथ साथ हमारी मिट्टी भी बह जाती है। हमारी उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की जो है 15-20 से 25 सेंटीमीटर तक ही उर्वरा शक्ति रहती है, और उसके नीचे की मिट्टी जो है वो सही नहीं होती है, वो खेती करने योग्य नहीं होती है। इसलिए उसका जो है संरक्षण करना, उस मिट्टी को, जल के साथ साथ मिट्टी को भी बचाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए तरह तरह की उपाय जो है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को बताते हैं और आज उसी पर हमको विशेष चर्चा करनी है।
1: जी हाँ, और वो प्रमुख तकनीकियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं?
2: वो प्रमुख तकनीकी जो है किसान जो है सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो खेत हमारे हैं वो यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत है।
1: जी जी।
2: और उसमें जो है किसान जो है वो सबसे पहले जो है कंटूर फार्मिंग करेंगे। जैसे खेत की जुताई करते हैं तो जैसे करते हैं वैसे ही करें, लेकिन जो अंतिम जुताई उसकी करें वो जो है वो स्लोप के विपरीत करें, स्लोप के दिशा में जुताई ना करें। इसके बाद जो है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो पानी बह करके आता है वो कुंडों में जो है वो रुक जाता है, रुकता है, जिसके चलते जो है हमारी मिट्टी जो है नहीं बह पाती है।
1: हाँ।
2: इसलिए जो है आप अंतिम जुताई हमेशा जो है
1: स्लोप में नहीं करें,
2: स्लोप में के साथ ना करें, स्लोप के विपरीत करें। दूसरा ये कर सकते हैं किसान भाई जो है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पट्टीदार खेती।
1: अच्छा।
2: पट्टीदार खेती का मतलब ये होता है कि जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी बहती है, तो आप जो है एक लाइन जो है इस तरह की फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को रोकती हो।
1: अच्छा।
2: और दूसरे लाइन में जो है ऐसी फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को नहीं रोकती है।
1: अच्छा।
2: जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लाइन मक्का लगा रहे हैं तो एक लाइन जो है आप मूंग लगाइए।
1: अच्छा।
2: तो मक्का यदि मिट्टी के बहाव को नहीं रोकेगा तो मूंग रोक देगा,
1: फिर दूसरे लाइन में
2: आप फिर दूसरे लाइन में फिर आप मक्का लगाइए, फिर उड़द मूंग लगाइए। तो ऐसे कर इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है पट्टीदार खेती कहते हैं। तो इस तरह की खरीफ फसलों में भी ज्यादा ही हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है हमारी कमजोर होती है, मिट्टी बह जाती है।
1: जी जी।
2: तो ऐसे केसेस में जो है देखा जाता है कि यदि आप पट्टीदार खेती कर रहे हैं तो उससे हमारी जो है मिट्टी भी बचती है और पानी भी बचता है हमारा।
1: अच्छा।
2: इसके बाद जो है आप ये काम कर सकते हैं कि वेजिटेटिव जो है बंड बना सकते हैं, वेजिटेटिव बंड बना, जैसे कि जहाँ जहाँ पर ज्यादा इरोजन हो रहा है वहाँ पर मेड़ों पर जो है आप जो है सजीव बंध जिसको कहते हैं, जैसे कि मूज की घास हो, मूज हो गया।
1: अच्छा।
2: या मतलब कि आपका और भी जैसे दीननाथ घास हो गया, तो इस तरह की
1: ये सब रोकेंगे।
2: ये सब जो क्या करता है कि वो पानी को बहने नहीं देता है, मिट्टी को रोक देता है वहां पे। ये आप काम कर सकते हैं ऐसे करके भी। इसके अलावा भी जो है आप उसमें बंडिंग कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि यहाँ पर झारखंड में हमारे खेत जो हैं वो छोटे छोटे हैं, इसके पीछे कारण है। छोटे छोटे इसलिए हैं कि वो जितना स्लोप उसका कम रहेगा उतना ही मिट्टी का इरोजन कम होगा।
1: अच्छा।
2: मिट्टी का जो कटाव होता है, यदि मिट्टी का स्लोप बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से हम बंडिंग नहीं किए हुए हैं तो मिट्टी का कटाव ज्यादा
1: हो जाएगा।
2: इसीलिए खेत को यहाँ पे छोटे छोटे बनाया जाता है ताकि मतलब कि उसकी जो स्लोप की हमारी लंबाई है वो कम हो जाएगी और मिट्टी का कटाव जो है हमारा रुक जाएगा।
1: रुक जाएगा बिल्कुल।
2: तो इस तरह से जो है हम उसमें मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। और इसके अलावा जल के संरक्षण करने के लिए जो है बहुत तरह की उपाय है। उसमें जो है जल का संरक्षण करने के लिए आप जो है तालाब का, यहाँ झारखंड में कंसेप्ट है कि तालाब का निर्माण,
1: डोभा का निर्माण करवा दीजिए।
2: हाँ, डोभा का निर्माण करिए। जैसे कहा जाता है खेत का पानी खेत में।
1: हाँ।
2: तो उसके पीछे कारण यही है कि जो आपका खेत का अंतिम सिरा है वहां पर आप डोभा का निर्माण कर दीजिए।
1: अच्छा।
2: और डोभा जो है बहुत ज्यादा गहरा नहीं, मतलब कि 10 फीट गहरा और जो है 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा,
1: इतना काफी है।
2: इतना काफी है ताकि खेत का पानी जो है आपके उसमें जमा हो जाएगा
1: और इसके अंदर जाएगा।
2: हाँ, आज जो आप जब आप जरूरत पड़ेगी तो उससे जो है आप निकाल सकते हैं।
1: निकाल भी सकते हैं बिल्कुल।
2: दूसरा उसका उपाय है कि आप तालाब का जब भी निर्माण करें तो वो जो है आप जैसे कि यहाँ की जमीन जो है ऊपर नीचे है, जैसे ऊपरी जमीन, मध्यम जमीन और नीचे की जमीन।
1: हाँ।
2: तीन तरह की जमीन।
1: हाँ।
2: यहाँ पे है।
1: हाँ।
2: तो यदि आप ऊपरी जमीन में आप तालाब बना रहे हैं तो ये देख करके बनाएं तालाब की उसका जो है कैचमेंट एरिया कितना है।
1: अच्छा।
2: मतलब कैचमेंट एरिया से किसान इसको ऐसे समझे कि उसमें पानी आने का जो है
1: साधन
2: कितना, कितनी दूर से पानी उसमें आ सकता है।
1: अच्छा।
2: यदि पानी का आने का साधन वहाँ पे है तो जो है वहाँ तालाब का निर्माण करें।
1: अच्छा।
2: ताकि मतलब कि बारिश का पानी जब हो तो वो तालाब में आ जाए। ऐसी जगह तमाम हम लोग देखे हैं कि ऐसी जगह तालाब भी बन जाते हैं जहाँ पानी का कोई आगमन नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो है तालाब भर नहीं पाता।
1: हाँ, सूख जाता है।
2: हाँ, तो तालाब के निर्माण में एक और सावधानी रखनी है कि तालाब जब भी बनाए वो एक निश्चित लंबाई चौड़ाई और गहराई का रहे, जैसे कि मैंने 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा
1: जी।
2: और जो है 10 से 12 फीट गहरा हो। और उसकी जब खुदाई कराए जेसीबी से या अपने किसान जो है अपने से भी उसकी खुदाई कराते हैं, तो उसकी जब भी खुदाई कराए तो उसमें जो है उसकी जो मेड़ दे वो तीन तरफ से ही मेड़ दे, एक तरफ से उसको खुला रखे।
1: अच्छा।
2: ताकि उससे पानी आ सके। बहुत जगह देखा जाता है कि वो चारों तरफ से मेड़ दे दी जाती है।
1: हाँ, इसके चलते जो है
2: वो जो है पानी आ नहीं पाता है तालाब में। तो किसान भाई को

0: हम सलाह देंगे कि मैंने उसको मेड़ जो भी बनाए वो तीन तरफ से बनाए, और मिट्टी की जो कटिंग करेंगे उसको, वो जो है मिट्टी कटिंग करने के 3 से 4 फीट बाद जो है वो मिट्टी को डालें।
1: अच्छा।
0: जैसे कि आप मिट्टी की कटाव यहाँ से कर रहे हैं तो उससे 3 फीट छोड़ करके मिट्टी को फेंके, जिसको जो है हम लोग बर्म कहते हैं, वो बर्म के ऊपर मिट्टी ना रहे।
1: अच्छा।
0: ताकि जैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद मिट्टी बहती है तो वो तालाब में सीधे चली जाती है।
1: अच्छा।
0: तो वो जो है जो बर्म जब रहेगा तो वहाँ पर मिट्टी पानी जो मिट्टी जो है तालाब के अंदर जो है कम आएगी। पहले साल जब नया तालाब बनता है तो उसमें जो है मिट्टी ज्यादा आ जाती है। उसके पीछे कारण है कि जहाँ से वो खुदाई करता है लोग तालाब की, वहीं पर मिट्टी फेंक देता है, और बारिश हुई है तुरंत मिट्टी जो है बह करके तालाब।
1: अच्छा, बांध पर भी तो वृक्ष लगा सकते हैं?
0: हाँ, बांध पर वृक्ष लगा सकते हैं, वो भी मिट्टी के आपको कटाव को रोकेगा। इसके अलावा जो भी तालाब बनाए तो उसको एक निश्चित स्लोप दे, जैसे कि 1:1 हम लोग कहते हैं या 1:2 कहते हैं, माने 1:1 या 1:2।
1: अच्छा।
0: जैसे कि 1 फीट गहरा करे तो 1 फीट जो है चौड़ा करे, फिर 1 फीट गहरा करे, फिर 1 फीट चौड़ा करे। सीढ़ी नुमा तालाब बनाना चाहिए, डायरेक्ट उसकी जो है खुदाई नहीं करनी चाहिए। उससे क्या
2: हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण सभा कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान

0: गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गया सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में एसआईआर अभियान के तहत आज शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भ्रामक खबरों का खंडन कर शत प्रतिशत पंजीकरण का दिया भरोसा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह को दी 17 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। अधिकारियों और संवेदकों को गुणवत्ता से समझौता न करने की दी चेतावनी। देवघर में मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की उच्च स्तरीय समीक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश। चतरा पुलिस और एसएसबी को बड़ी कामयाबी। लावालौंग थाना क्षेत्र से टीएसपीसी का इनामी और वांछित उग्रवादी नरेश गंजू गिरफ्तार। और 135वें डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की चमचमाती ट्रॉफी आज ट्रॉफी टूर के तहत पहुंची गुमला। दर्शकों को मैच में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत आज शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से नए इन्यूमरेशन फॉर्म भरने और मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा इस अभियान की लगातार प्रशासनिक निगरानी की जा रही है ताकि सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोशल मीडिया पर मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक दुष्प्रचार का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि इन्यूमरेशन चरण की तार्किक विसंगतियों के आंकड़ों का संकलन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि त्रुटियों की पहचान और निराकरण मतदाता सूची को शुद्ध बनाने की एक नियमित प्रक्रिया है और सभी पात्र मतदाताओं का नाम इसमें शामिल करना सुनिश्चित किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू आज से राज्य के 4 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंचे हैं। वे 23 जुलाई तक पार्टी की विभिन्न समितियों और विधायकों के साथ मैराथन बैठकें करेंगे। प्रभारी के राजू ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए लाखों लोगों के नाम छूटने की आशंका जताई है। उन्होंने आम जनता की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया की समय सीमा को कम से कम 10 दिन और आगे बढ़ाने की मांग की है।
1: हम सभी एमएलएस माई सीओ के पास जाके वो एसआईआर को और 10 दिन एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड होगा क्योंकि केवल और 9 दिन है मगर लाखों वोटर्स का मैपिंग नहीं हुआ, डिजिटाइजेशन नहीं हुआ।
0: नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह शहर के विकास के लिए 17 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 119 विकास योजनाओं का आज शिलान्यास किया है। मौके पर मंत्री ने अधिकारियों और संवेदकों को विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इन 119 योजनाओं के धरातल पर उतरने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जामताड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण के घर हुई पुलिस छापेमारी को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला के मौत के मामले को उठाने के कारण भाजपा नेताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है।
2: पुलिस जो है वो जनरल डायर की पुलिस की तरह काम कर रही है। डीएसपी के साथ 4 थानों के पुलिस ने धावा बोला और जिला अध्यक्ष के घर को इस तरीके से घेर लिया गया जैसे कि किसी आतंकवादी के यहां रेड हो रहा। पूरे घर के सदस्यों को बहुत ही खराब तरीके से बिहेव किया गया।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने और सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित मेला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर

0: लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड कैडर के वरिष्ठ IFS अधिकारी राजीव लोचन बख्शी के खिलाफ वित्तीय गबन के आरोपों की उच्च स्तरीय SIT जांच और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि रांची वन प्रमंडल में रहते हुए इस अधिकारी द्वारा करोड़ों रुपए का सुनियोजित गबन और राजकोष से लूट की गई है। राजधानी रांची में आज नाबार्ड का 45वां स्थापना दिवस भौगोलिक संकेतक GI स्थानीय विरासत को वैश्विक पहचान थीम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि और झारक्राफ्ट के प्रबंध निदेशक गरिमा जैन ने राज्य के GI उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया। कार्यक्रम में राज्य के 12 अनूठे GI उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्थानीय शिल्पकारों और उत्पादक समूहों को मंच पर सम्मानित किया गया। चतरा पुलिस ने TSPC संगठन के वांछित उग्रवादी नरेश गंजू उर्फ रविकांत को लावालौंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सिमरिया SDPO ने बताया कि इस उग्रवादी पर हत्या, रंगदारी और पुलिस पर हमले सहित 6 मामले दर्ज थे।
1: ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि घर पे निबंधन या लावालौंग में है, तो इसके आने की सूचना थी। इसी क्रम में छापामारी दल का गठन किया गया और उस छापामारी दल ने वहां पे रेड किया, तो वहां पे जिसको जो मंदनिया में एक फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड के पास वाले दंगल से इसको गिरफ्तार किया गया।
0: हजारीबाग के सामाजिक संगठन यूथ विंग ने मॉनसून को देखते हुए शहर के 60 से अधिक ट्रैफिक पुलिस जवानों को रेनकोट उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने विपरीत मौसम में भी यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने वाले इन जवानों के प्रति यह सम्मान व्यक्त किया। हजारीबाग के SP अमन कुमार ने यूथ विंग के इस सराहनीय कार्य का स्वागत किया और इसे एक सजग समाज का प्रतीक बताया।
2: हजारीबाग यूथ विंग के द्वारा CCR के प्रांगण में आज ट्रैफिक के जवानों को रेनकोट का वितरण किया गया है। बरसात को देखते हुए कार्य किया गया है ताकि ट्रैफिक के जवानों को काम करने में थोड़ी सहूलियत। ट्रैफिक का काम काफी टफ है और जवान जो है लगातार दिन भर खड़े रहते हैं और बरसात, धूप और गर्मी, कोई भी मौसम हो, ठंड हो, लगातार अपना ड्यूटी करते हैं।
0: रांची पहली बार एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 135वें संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके सभी 7 मुकाबलों के लिए दर्शकों को निःशुल्क प्रवेश दिए जाएंगे। मोराबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेल निदेशक छवि रंजन और सेना के प्रतिनिधि मनोज कुमार झा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस भव्य आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। इधर 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी आज ट्रॉफी टूर के तहत गुमला पहुंची, जहां जिला प्रशासन और खेल प्रेमियों ने सेना के जवानों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा गया। मौके पर परमवीर अल्बर्टिका स्टेडियम में एक प्रदर्शनी मैच भी खेला गया। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन 25 जुलाई से राजधानी रांची में होने जा रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में SIR अभियान के तहत आज शहरी क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भ्रामक खबरों का खंडन कर 100% पंजीकरण का दिया भरोसा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह को दी 17 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। अधिकारियों और संवेदकों को गुणवत्ता से समझौता न करने की दी चेतावनी। देवघर में मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की उच्च स्तरीय समीक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश। चतरा पुलिस और SSB को बड़ी कामयाबी। लावालौंग थाना क्षेत्र से TSPC का इनामी और वांछित उग्रवादी नरेश गंजू गिरफ्तार। और 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की चमचमाती ट्रॉफी आज ट्रॉफी टूर के तहत पहुंची गुमला। दर्शकों को मैच में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सरायकेला खरसावां जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर और गम्हरिया थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के लिए जिला पुलिस ने विशेष पहल शुरू की है। क्षेत्र में गश्त व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए टाइगर मोबाइल की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लगातार निगरानी और त्वरित पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने तथा आम लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि
2: टाइगर मोबाइल का संख्या थाना आदित्यपुर में बढ़ा दिया गया है। उसमें जो स्टाफ्स वगैरह या फिर जो कांस्टेबल्स वगैरह की कमी थी उसको भी पूरा कर दिया गया है। अभी फिलहाल हम लोग बस वो प्रिवेंटिव एक्शन पे जा रहे हैं ताकि कोई क्राइम ना हो। धीरे धीरे हम लोग जो क्रिमिनल्स जेल से निकल गया है या फिर जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे और जो केस में वांटेड है उन पे भी हम लोग कार्रवाई।
1: रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा शनिवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में स्वास्थ्य जाँच एवं नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के कुल 113 कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी प्रदान किया गया। रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव दया शंकर मिश्रा ने कहा कि
3: सब आई चेकअप का कैंप हम लोग करवाए थे जिसमें सारे सरकारी ऑफिसर या सरकारी अधिकारियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमंडल के SDPO कार्यालय के नगर पंचायत के और भी जो आसपास के सरकारी कार्यालय है उनके लोगों को बुलाया गया और जांच कराया गया। कुल 61 लोग यहां पर अभी तक जिसका चेक हुआ है चेकअप हुआ और 54 लोगों का आई चेकअप हुआ है।
1: विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सरायकेला खरसावां जिले का प्रदर्शन राज्य स्तर पर बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आने वाले दिनों में और अधिक प्रभावी प्रयास कर बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने कहा कि
4: 9 तरह का आपको विधि है जनसंख्या को करने के जिसमें से 4 विधि में हम लोग राज्य में अव्वल है जबकि कोई भी जिला 1 में रहा हम लोग 4 में रहे। पिछले वर्ष के बाद इस वर्ष थोड़ा और अच्छा करें 4 नहीं बल्कि 9 में हम समझे कि राज्य में अव्वल।
1: करीब 50 वर्षों से आयोजित होने वाला ऐतिहासिक रथ मेला तथा लगभग 350 वर्ष पुरानी रथ यात्रा स्थानीय लोगों की आस्था श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मेले का उद्घाटन शनिवार को नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज चौधरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परंपरा क्षेत्र की पहचान है और इसके संरक्षण एवं भव्य आयोजन के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि
5: ये जो ऐतिहासिक रथ यात्रा मेला है ये लगभग 50 साल से मेला चल रहा है और यहाँ की संस्कृति करीब 350 वर्ष पुरानी है और हम लोग मेला में सभी तरह के बूढ़े से लेकर महिला बुजुर्ग बच्चे सभी का हम लोग ने ध्यान रखा है।
1: कला और सांस्कृतिक विरासत को अपनी गोद में समेटे सरायकेला में रथ महोत्सव ने एक विशिष्ट पहचान बना ली है। लगभग 350 वर्ष पुरानी यह ऐतिहासिक परंपरा आज भी पूरी भव्यता के साथ कायम है। समय का चक्र निरंतर आगे बढ़ता रहा लेकिन इस गौरवशाली महोत्सव की गारिमा आस्था और परंपरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला।

0: अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, कैसे हैं? बुनियाद कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आ गया आप सबों के घर आंगन में। अभी तक फोन कॉल आ रहे हैं, हमने बातें ही ऐसी की थी कि फोन कॉल लगातार आ रहे हैं। बीएड की बातें की थी और बीएड इंटीग्रेटेड स्पेशल बीएड की बातें की थी, जो 4 साल का कोर्स होता है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। आज उसके अगले हिस्से को हम लेकर आए हैं। ढेर सारे सवाल आए हैं, जिसमें एक सवाल ये कॉमन है कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके बारे में फिर से एक बार बता दिया जाए। जरूर बताएंगे, ये कार्यक्रम है आपके लिए, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं जानकारियां पहुंचाने के लिए। थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि जिन्होंने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके फोन कॉल्स आते हैं, और उससे भी अच्छा लगता है जब आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं देखने के लिए। एक आध बार मुलाकात हो गई है कुछ लोगों से हमारी भी, बोला आप ही राजेश जी हैं, हमने कहा जी अच्छा लगता है सर, थैंक यू। तो अब थैंक यू, आभार, अभिनंदन आपका करना चाहते हैं कि आप हम पर इतना विश्वास करते हैं। बहरहाल, टेक्निकल पढ़ाई की बातें हम लगातार कर रहे हैं कि टेक्निकल पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपने पैरामेडिकल की पढ़ाई की तो पैरामेडिकल के अंदर में टेक्नीशियन हो सकते हैं, ओटी असिस्टेंट हो सकते हैं, आप रेडियोलॉजी में जा सकते हैं, इसके अलावा फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, आप नर्सिंग में जा सकते हैं, एएनएम और जीएनएम बन सकते हैं, आप फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा या फार्म डी कर सकते हैं, या जर्नलिज्म में जा सकते हैं, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हैं, बीबीए मैनेजमेंट के साथ लॉ, बीए के साथ लॉ, बीएससी के साथ लॉ, अगर आप 3 साल वाला भी लॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म कर सकते हैं, लाइब्रेरी में किताबों से आपको बहुत प्यार है तो किताब के रख रखाव के लिए एक पढ़ाई होती है लाइब्रेरी साइंस, आप उसमें जा सकते हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बार फिर से डॉक्टर अवनीश रंजन से, जो पुनर्वास विभाग में डीन हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, और हम स्पेशल की बात करते हैं, चैलेंज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नंबर बताए देते हैं, नंबर नोट कर लें, नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005। और दूसरे कोर्स के बारे में भी, या यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल के बारे में अगर आप जानकारियां चाहते हैं तो www.gnsu.ac.in ये वेबसाइट का पता है, आप यहां जा सकते हैं। बहरहाल, हाँ, एक जानकारी और ये है कि अगर पैसे की समस्या है ना, तो 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जो बिहार सरकार देती है, इससे भी बहुत सारे कोर्स किए जा सकते हैं। आप पता लगाइए और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आ जाइए, या ये जो नंबर है 9431899002

0: या 1800-121-0051 पर पूछ लीजिए। बहरहाल डॉक्टर अवनीश रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़े में।
1: मैं डॉक्टर अवनीश रंजन और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के डीन के पोस्ट पे हूँ। और हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 कोर्सेज अभी संचालित हो रहे हैं इस फैकल्टी से, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन हैं, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता और हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता। ये 2 में हमारे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 4 साल वाले चल रहे हैं।
0: चलिए, एक सवाल जो आपने पिछले सप्ताह बताया था उसमें एक बार फिर से ये बताने की बात कही गई है कि जो प्लेन बीएड 2 साल का ग्रेजुएशन के बाद होता था और जो इंटीग्रेटेड बीएड है जो इंटर के बाद 4 साल का होता है और जो स्पेशल शब्द जुड़ा है जिसमें, उसके बारे में एक बार फिर से बता दीजिए, फिर बातों को हम आगे बढ़ाएं।
1: बीएड का ये मतलब है कि बच्चे तभी एडमिशन लेते हैं जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब 3 साल के कोर्सेज हैं, कई बार यूनिवर्सिटी लेट होने के कारण, एग्जामिनेशन लेट होने के कारण 4-5 साल भी लड़कों को लगते हैं। उसके बाद फिर 2 साल का बीएड करना होता है और तब आप टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं बीएड करने के बाद। लेकिन ये जो नया बीएड आया है इंटीग्रेटेड बीएड, जिसको इजी टेप बोलते हैं, कई लोग आप जानते होंगे, एनसीटी जो नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल है उनके द्वारा भी आईटेप चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी इंटीग्रेटेड बीएड ही है, वो 4 साल का वो भी है। वहाँ पे जनरल बीएड की पढ़ाई होती है और हमारे यहाँ स्पेशल बीएड की पढ़ाई होती है। अब स्पेशल ये है कि अभी जो कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने या आईसीएसई बोर्ड ने या स्टेट बोर्ड ने ये कंपलसरी किया है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन के टीचर को की का अपॉइंटमेंट जरूरी है, ये कंपलसरी हो गया है। और आप देखे होंगे पिछले 6 महीने के अंदर में सेंट्रल स्कूल जो है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार और नवोदय विद्यालय संगठन भारत सरकार, इसके द्वारा देश के स्तर में वैकेंसी निकाली गई हर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में। साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने, और खासकर बिहार की बात हम करें तो बिहार ने बीपीएससी जो बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन है वहां से भी वैकेंसी टीचर की आई और 29 जनवरी को ही करीब 7500 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी जिसका रिटन टेस्ट हुआ है और उसके बाद वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के रूप में वो अपॉइंट हो जाएंगे। तो वो जो डिग्री है जिसके बेस पर वो बीपीएससी की परीक्षा देंगे या सेंट्रल स्कूल या नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करेंगे, वो यही इंटीग्रेटेड बीएड है या यही बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। डॉक्टर अविनीश से हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अविनीश, आप ये पढ़ाई करके चाहे जहां के रहने वाले हों, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा या फिर और भी गोड्डा के रहने वाले हों या फिर आप डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, कहीं भी आप ये पढ़ाई करके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, समाज की भलाई भी कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा?
1: मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है वो एक रूरल एरिया में हमारा यूनिवर्सिटी है और ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर भी हम लोग कैंपस के अंदर में इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर हमारे यहाँ चलते हैं जो इस तरह के बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी थेरेपी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है। और आप जैसे लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, करने के बाद आप सक्षम ऐसे होंगे कि आप ऐसा सेंटर अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में खोल पाएंगे। आप उनको तो सर्विस देंगे ही, एक बहुत ही नोबल सर्विस है वो तो आप देंगे ही, साथ साथ आप एक अच्छी अर्न भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे जो आज बॉम्बे में जाके, दिल्ली में जाके, बड़े शहर में जाके इलाज करा के लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो तो बच्चों का क्या होगा कि अपने पेरेंट्स के साथ भी रह पाएंगे और आपके यहाँ थेरेपी होगी तो आपका भी एक अच्छे से धनोपार्जन होगा और आप एक सोशल सर्विस के साथ साथ अपनी जीवन को का भी यापन भी अच्छे से कर पाएंगे।
0: एक बात और बताइए, हाँ, कि ये जो कोर्स है ना इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एडुकेशन का, ये सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में हो रहा है या बिहार के और भी किसी हिस्से में हो रहा है, विश्वविद्यालय में हो रहा है, इसकी भी जानकारी भी हमें दे दीजिए, युवा साथियों को होनी चाहिए।
1: वर्तमान में झारखंड और बिहार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ही है जहां पे ये पिछले साल से ये कोर्स शुरू किया गया है और भारतीय पुनर्वास परिषद ने इन्हें 2 कोर्स

0: इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के दो कोर्सेज के लिए मान्यता दी है और अगले 5 साल तक के लिए यह मान्यता है। और यूपी में एक आध जगह कहीं शुरू हुआ है, वो भी बहुत ही छोटे स्तर पे भी अभी है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपके ही राज्य में एक बड़ा एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक प्रोग्राम शुरू हुआ है। आप चाहें तो इसमें एडमिशन लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
1: अच्छा, एक बात बताइए, इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल में बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज, हाँ, ये सारे उपलब्ध हैं, इसका मतलब क्या है?
0: ये ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी, मतलब कि आप ग्रेजुएशन भी आपका होगा, मतलब अगर आप बीए करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो वो आप कर पाएंगे। साथ साथ इसी ड्यूरेशन में, मतलब 4 साल के ही अंदर में, आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के भी पढ़ाई को करके उसकी भी डिग्री ले पाएंगे। मतलब ये ड्यूअल डिग्री है, आप दो कोर्स एक साथ कर रहे हैं और एक ही पीरियड में आपको दो तरह की डिग्री मिल जाएगी।
1: अच्छा, चलिए, आपके यहाँ, जैसा कि आपने इस सवाल के पहले जवाब दिया कि संभवतः ये सिर्फ आपके यहाँ ही शुरू किया गया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो अपने बारे में बताइए कि क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, हाँ, क्या एक नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है कि नहीं है?
0: इस कोर्स को शुरू करने से पहले भारतीय पुनर्वास परिषद में हम लोगों ने जब अप्लाई किया था एफिलिएशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, तो एक उनका एक अपना नॉर्म्स है कि कितने टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम कैसे हो, लाइब्रेरी कैसे हो, आप हम लोगों के साथ एक स्कूल अटैच हो जहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को हम लोग भेज सकें। तो ये सब कुछ के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम लोगों ने अप्लाई किया था। वहाँ से हम लोगों के टीम एक आई, इंस्पेक्शन हुई, एक प्रोफेशनल्स की टीम आई थी, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोगों को ये रिकॉग्निशन मिला कि आप इस कोर्स को चला सकते हैं। और ये चूंकि हमारा कैंपस करीब करीब 100 एकड़ में है और इसमें और भी कई दूसरे कोर्सेज भी हमारे यहाँ चलते हैं, तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हमारे यहाँ टीचिंग की क्वालिटी को लेके, हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा माहौल है, जिसके का रिकॉग्निशन हमारी कई जो सेंट्रल जो काउंसिल्स हैं उन्होंने दिया है अलग अलग कोर्सेज के लिए। उसी तरीके से भारतीय पुनर्वास परिषद ने के मानक पे हम लोग खड़े उतरे हैं, जिसके कारण हमको ये मान्यता मिली है।
1: बहुत खूब। हाँ, डॉक्टर अवनीश रंजन, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और क्या कहना चाहते हैं चलते चलते लोगों से,
0: युवाओं से अपील है हमारी कि आप ये इस कोर्स को एक बार समझिए, एक बार देखिए, एडमिशन लीजिए। आप अगर आप ग्रेजुएशन, आपका अगर प्लान है कि आगे जाके आपको टीचर बनना है या आगे आपको जाके ऐसे काम को करने हैं जिसमें कि आपकी अच्छी अर्निंग भी हो, आप सोशल सर्विस भी कर पाएं और आपका रिकॉग्निशन सोसाइटी भी अच्छा बने, तो आप तीनों, आप अगर इस कोर्स को करेंगे तो तीनों आपके जो नीड है या आपके तीनों जो आपके जो ख्वाब हैं वो जरूर पूरे होंगे। क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि 4 साल के अंदर में आप जब पढ़ के निकलेंगे तो नौकरी आपके दरवाजे खड़ी होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी इसमें है और लोग कम हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ कि अभी जो जस्ट 29 जनवरी को परीक्षा हुई है बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, तो 7500 सीट थे और करीब करीब 6500 से 7000 ही कैंडिडेट अपीयर हुए उसमें। तो आप ये अंदाज लगाइए कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो अगर जो लोग जितनी जल्दी इस फील्ड में आएंगे उनका नौकरी उतना ज़्यादा श्योर है, क्योंकि अभी सारी जगह वैकेंसीज हैं, सब जगह खाली सीट है, तो आप आएंगे तो आपको एक अच्छा चांस मिलेगा।
1: थैंक यू डॉक्टर अवनीश रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, एकदम नया कोर्स है, सीट भी कम है, हाँ, बहुत ज्यादा सीट नहीं है, इशारा समझिए। अगर जो आप चाहते हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल का, वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है और संभवतः अपने बिहार झारखंड में पहली दफा ये कोर्स आया है बहुत ही लिमिटेड सीट के साथ, आप चाहे तो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 9431899002 और एक टोल फ्री नंबर है 1800121001 और एक वेबसाइट का पता भी है www.gnsu.ac.in। इसमें जितने तरीके के 13-14 तरीके के टेक्निकल पढ़ाई कराए जाते हैं सारी की जानकारियां आपको मिलेंगी। फिलहाल थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि उन्होंने ये कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। राजेश को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आप लीजिए, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आ जाइए हम आनंद लेते हैं लता मंगेशकर के गाए कुछ फिल्मी गीतों को।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आपने लुत्फ उठाया एक ही गायिका लता मंगेशकर के गाए फिल्मी गीतों को। फिल्म के नाम थे आपके साथ और फांसी के बाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ही डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में आज आइए हम सुनते हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद से ली गई पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, जो कि रांची के हैं और विषय है हम भूलने क्यों लग गए। इनसे बातचीत कर रहे हैं इस संबंध में संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, जब उम्र बढ़ती है तो याद रखने की क्षमता पर असर होने लगता है। बढ़ती उम्र में तन और मन दोनों स्तर पर बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ नया करने या सीखने या याद रखने में अधिक समय हमें लग जाता है या हम याद नहीं कर पाते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों को भूलने लग जाते हैं, जैसे हमने अपना चश्मा कहाँ रख दिया, चाबी कहीं और रख दिया, कागजात कहीं रख कर हम भूल गए और फिर उसे खोजने लग जाते हैं। यानी चीजें रख कर भूल जाने या उन्हें खो देने की घटनाएं अक्सर बढ़ने लग जाती है। देखा जाए तो ये लक्षण उम्र बढ़ने पर बुजुर्गों में ज्यादा होती थी, परंतु अब कम उम्र के युवा में भी भूलने के लक्षण तेजी से दिखलाई पड़ने लगे हैं। जब याददाश्त कमजोर होने लगती है तो रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल भरी हो जाती है। तो हम भूलने क्यों लग जा रहे हैं, क्या कारण है? एक समय था कि हमारे बुजुर्ग साथी भूलने लग जा रहे थे, आजकल कम उम्र के हमारे साथी भी भूलने के शिकार हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो जा रहा है? हमारी जीवन शैली कितनी हद तक जिम्मेदार है? हमारा रहन सहन और हमारा खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल इसको किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान के सब प्राध्यापक डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल भूलने की प्रवृत्ति लोगों में क्यों बढ़ते जा रही है?
2: आजकल भूलने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण अगर हम कहें तो हमारी जीवन शैली ही कहेंगे हम। ओल्ड एज में पहले भी लोगों में ये भूलने की प्रवृत्ति होती थी, जिसे हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। उसमें भूलने के साथ साथ उनके अदर फंक्शन जो है, जैसे स्पीच में प्रॉब्लम होगा या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो दिनचर्या के कार्य है उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, किसी कार्य को करने में उनको कठिनाई होने लगती है, तो इसको हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। ये कॉमन है, 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे एजिंग होती है वैसे वैसे हमारे ब्रेन सेल्स के लॉस होने लगते हैं, और एक बार जो ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं वो वापस रीजनरेट नहीं कर पाते पूरी तरह, क्योंकि सेल्स कम होते जाते हैं। तो सेल्स कम है इसलिए हमें समझने के लिए कि भूलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। भूलने की शिकायत यंग एज में जो भूलने की शिकायत है उसका मुख्य कारण एक तो भागदौड़ की जिंदगी हो गई है, और कहीं ना कहीं वो साथ उनको बहुत सारे कार्य उन्हें करना रहता है, तो उनमें बहुत सारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं और उसी दौरान वो कार्य भी करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसे एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। एकाग्रता की कमी के कारण वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर नहीं हो पाता है, प्रोसेस नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि वो फिट हो सके, हमारे ब्रेन में किसी कोने में याद के रूप में वो संग्रहित हो सके। तो बाद में जब हम लोग रिकॉल करते कि अरे ये काम तो मैंने किया था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो मुख्य कारण वही है कि वो एकाग्रता से उन्होंने नहीं किया था, उनके दिमाग में उस तरह तरह तरह की बातें चल रही थी और काम कुछ और कर रहे थे, तो वो बाद में उन्हें लगता है कि अरे मैं तो ये भूल जा रहा हूं, मुझे भूलने की शिकायत हो रही है। लेकिन यंग एज में जनरली जो डिमेंशिया जो कहते हैं वो बहुत ही अनकॉमन है, यूजुअली ये 60 के ऊपर होते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसमें 40-45 साल में भी वो हो सकते हैं, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एक प्रकार का डिमेंशिया है, उसमें ये चीजें पाई जा सकती है। उसके साथ साथ कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर उनको हो रहे हैं तो उसके साथ ये चीजें होती है, लेकिन अगर उन्हें इस तरह की कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ भूलने की शिकायत हो रही है यंग एज में, तो मेनली उसमें एकाग्रता की कमी वो एक मुख्य कारण हो सकता है, और साथ ही साथ अवसाद या डिप्रेशन या एंग्जाइटी भी आप कह सकते हैं। उस कंडीशन में भी हम जो कार्य करते हैं उसे याद नहीं रख पाते, हमारा ब्रेन उसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रेन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं जिसके कारण उन्हें लगता है कि वो भूल गए हैं। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं कि फॉल्स डिमेंशिया, ये डिमेंशिया है नहीं एक्चुअली, ये फॉल्स है। तो ये एक कारण अभी जो है वो हो सकता है।
1: कभी कभी हमारे बुजुर्ग साथियों में ये होता है कि वो पुरानी चीजें तो याद रखते हैं लेकिन वर्तमान की चीजें, कोई उनसे मिल कर गया, उन्होंने क्या खाना खाया, वो भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
2: यस सर, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। इसे ही ये डिमेंशिया का प्राइमरी लक्षण है, जो रीसेंट इवेंट्स हैं उन्हें उसी में उनकी याददाश्त की कमी रहती है। क्योंकि सेल्स जो हैं, जैसे हमें, हम कोई बात कैसे याद रखते हैं, हमें वो बात हमने सुनी, उसे ब्रेन में प्रोसेस किया और ब्रेन में कुछ कुछ वायरिंग, सिनेप्स हम लोग बोलते हैं, वो बन जाते हैं जिसके कारण वो स्टोर रहता है माइंड में। अब चूंकि ओल्ड एज हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स कम गए हैं, तो ये फंक्शन तो अब कम जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो जब वो रिसेंट जो काम कर रहे हैं एकाग्रता से भी अगर कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रेन सेल्स कम है इसलिए वो सिनेप्स नहीं बन पा रहे हैं, सिनेप्स नहीं बन रहे हैं, वो स्टोर नहीं हो पा रहा है ब्रेन में। तो अगली बार जब वो करते हैं तो उन्हें वो याद नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन में वो स्टोर है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। क्यों नहीं स्टोर है? ड्यू टू लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो ब्रेन में है वो कम हो गए हैं इसके कारण से, तो इसलिए वो भूल जाते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है डिमेंशिया का, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से अधिक है और उन्हें रीसेंट चीजें याद नहीं रहती है, तो उन्हें तुरंत किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस प्रकार किया जाता है? यदि किसी को भूलने की आदत हो गई, वो भूल जा रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन उनकी याददाश्त कमती जाएगी, या उसको रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, या इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है?
2: जनरली अभी तक जो कॉमन डिमेंशिया जो पाए जाते हैं उनका उपचार, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उसे रिवर्स बैक तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइमरी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट इलाज से, जैसे दवाओं के इलाज से और काउंसलिंग से, उसकी जो गति है उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं। जो अगर बिना इलाज से वो 2 साल 3 साल में जितना ज्यादा खराब होंगे, अगर हमने सही समय पे इलाज शुरू कर दिया तो उसे हम लोग 10 साल 12 साल तक 15 साल तक खींच सकते हैं। तो जो गति है प्रोग्रेशन की उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं दवाओं के द्वारा, काउंसलिंग सर्विसेज है, थेरेपी कहते हैं उसके द्वारा, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा ये चीजें हम लोग कर सकते हैं।
1: जी, कितना जिम्मेदार है डॉक्टर साहब हमारी जीवन शैली आज की? खान पान हमने अपने आप को बिगाड़ लिया है, हमारे रहने खाने पीने का समय निर्धारित नहीं है जी। तो कैसे हम अपने आप को व्यवस्थित करें ताकि हमारी याददाश्त बहुत मजबूत रहे?
2: याददाश्त के लिए हमारी जीवन शैली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ये जो बीमारी है, पहले इस उम्र 60 की उम्र में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन आजकल ये बहुत ही कॉमन होती जा रही है, बहुत ज्यादा मरीज इस उम्र के हमें मिल रहे हैं। इसका एक कहीं ना कहीं प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली में हम लोगों ने एक जंक फूड का एक बहुत ही प्रचलन है तो उसको अपना लिया है, पौष्टिक आहार से हम लोग दूर जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, और बहुत बार लोगों में पाया गया है कि वो नशे का सेवन करने लगते हैं। अगर कुछ समस्या होती है, कुछ टेंशन होती है, तो नशे का सेवन, स्मोकिंग जो कॉमन है आजकल, स्मोकिंग, वो सब अगर करेंगे तो आप में जो इस तरह की डिमेंशिया के लक्षण है वो अर्ली आ सकते हैं। साथ साथ हमें 40-45 के ऊपर फिर कुछ कुछ बीमारियां बहुत कॉमन हो गई आजकल, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अगर उसका हम लोग सही समय पे सही इलाज स्टार्ट कर दें तो भी ये चीजें हमें डिमेंशिया को कम करने में या उसे प्रोग्रेशन को धीमे करने में बहुत मदद करती है। तो जीवन शैली के साथ साथ नशे का सेवन ना करें, और अगर कुछ बीमारी है, शारीरिक बीमारी आपको हो रही है, तो उसका उचित और संपूर्ण इलाज कराएं, तो हम लोग इस डिमेंशिया का जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिले कर सकते हैं, और कुछ कुछ केसेस में इसे बहुत डिले भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं।
1: डिमेंशिया और टेंशन ज्यादा है तो डिमेंशिया का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा?
2: एक्चुअली थोड़ा सा ये है कि टेंशन, अगर यंग एज से बहुत अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, तो कहीं ना कहीं टेंशन हमारे ब्रेन सेल्स को तो हैम्पर करेगा ही, उसे डैमेज करेगा ही, तो रिस्क तो बढ़ जाता है। अगर जो अवसाद से लगातार ग्रसित है तो उनमें आगे के एज में, मतलब पोस्ट 60, डिमेंशिया होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अवसाद है, डिप्रेशन है, ये हमारे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो ब्रेन में है उसको कम करता ही है। तो एक तो वो है, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन या टेंशन में लोग क्योंकि एकाग्र नहीं हो पाते इसलिए वो चीजें भूल जाते हैं, जिसे मैंने टर्म बताया कि सुडो डिमेंशिया कहते हैं, तो वो एक चीज तो होती है
1: जी। तो एकाग्र मन से यदि हम काम करते हैं और एक साथ बहुत चीजें हम करने लग जाते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और फिर चीजों को हम भूल जा रहे हैं। तो एक समय में एक कार्य किया जाए,
2: कुछ लोगों में होती है ये प्रतिभा कि वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीटास्किंग नहीं अगर कर पाते हैं, तो उन्हें एकाग्रता से ही काम करना चाहिए ताकि उनको चीजें याद रहेगी, ये चीजें उनको मतलब अगर बाद में रिकॉल करना है तो याद रह सकती है। मल्टीटास्किंग कुछ लोग कर पाते हैं, ये उनकी एबिलिटी होती है, लेकिन सारे लोगों में ये एबिलिटी नहीं होती है। और मन को कहीं ना कहीं चित्त को प्रसन्न रखना होगा, शांत रखना होगा, जिससे ये चीजें हम लोग डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, और यदि इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत आप इसका इलाज शुरू कीजिए। और कोई भी चीज, छोटी छोटी चीजें घर में आप रखते हैं तो एकाग्र मन से उस चीजें को रखिए। अपनी चश्मा और कागजात कहीं और रख दिया, छोटी छोटी चीजें को आप भूल जाते हैं, चाबी कहीं और रख दिया और आप फिर परेशान होने लग जाते हैं। एकाग्र मन से रखेंगे, चित मन से रखेंगे तो चीज आपको सही जगह मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात आज के लिए है कि आप अपने जीवन शैली को सुधारिए। यदि बुरी आदतें हैं आपके साथ, उसको आप दूर कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, सह प्राध्यापक केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची, जब इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा और अपने इष्ट मित्रों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
0: हम भूलने क्यों लग गए, इस विषय पर अभी आपने सुना रांची के डॉक्टर सुरजीत प्रसाद से ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। इसी के साथ कल्याणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज़ हम करते हैं हकीकत इस फिल्म के गीत से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत के बोल इंदीवर के हैं, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इस अंतराल के बाद अब आइए सुनते हैं गंगा जमुना सरस्वती। इस फिल्म से आवाजें लता मंगेशकर की है, इंदिवर के बोल है, संगीत दिया है अनु मल्लिक ने।

प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में ACH बिहारी के बोलते संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं वो सात दिन। इस फिल्म से आवाज़ें लता मंगेशकर और एक बार फिर शब्बीर कुमार की है। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहब्बतें, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत दिया था जतिन ललित ने। और अब इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा

0: ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसी स्वेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति के मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।

0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग

0: ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
1: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में इथेनॉल आमेजिश प्रोग्राम साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ था। जनाब गोपी ने कहा कि E20 की जानी मुंतकली रफ्ता रफ्ता शवाहिद पर मबनी और साइंसी जायजे की बुनियाद पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की आमेजिश में साल 2013-14 के 1.53% से साल 2025-26 में 20% का इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद साइंसी जवाज के साथ पेशकदमी करना है और ईंधन के मेयारात में बेहतरी लाना है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान गहरी माशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमो के कई शोबों में इश्तराक को वसत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है।
1: आई एम ग्रेटली एनकरेज्ड बाय द ग्रोइंग कोऑपरेशन। देयर इज इमेंस पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स सच एज डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांसमेंट एट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी। इंडियन कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ मोल्डोवा इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड्स, ग्रीन हाइड्रोजन।
0: सदर जमहूरिया आज चिसिनाऊ में भारत मोल्दोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थीं। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खाहां है, वहीं मोल्दोवा का स्ट्रेटेजिक महल वकू और हुनरमंद अफरादी कुवत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कान की पेशकश करती है।
1: इंडिया ऑल्सो ऑफर्स गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर मोल्डोवान कंपनीज फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। We remain committed to fostering a transparent, predictable, and investor-friendly business environment. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in Moldova. Your enterprise, vision, and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
0: सदर जमहूरिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजियों, मसनूई जहानत, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे, ज़िरात, फार्मास्यूटिकल्स और सेहत देखभाल को मुस्तकबिल के इश्तराक के कलीदी मैदान करार दिया। इससे पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी हममनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चिसिनाऊ में स्टेफन शेल माहरे शीस फंट यादगार पर गुलाय अकीदत नजर किए। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू डिवीजन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। सैलाब से मुतासिर राजौरी और पुंछ जिलों में मुसलसल बारिश के सबब बचाव और राहत कार्रवाइयों में रुकावट पैदा होने से कम 7 अफराद अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ दोनों सरहदी जिलों में बारिश से मुतालिक वाकयात में जान गंवाने वालों के हर कुंबे को 6-6 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आज की शदीद बारिश ने पुंछ और राजौरी अजला में बचाव कार्रवाई को काफी मुतासिर किया। एक दिन पहले अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दिगर लापता हो गए थे। दोनों सरहदी अजला में आज देर रात वक्फे वक्फे से बारिश होती रही, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थीं। इस वजह से तलाश और बचाव की कार्रवाई में सख्त मुश्किलात पेश आईं। मुसलसल बारिश के बाद मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। इन इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। NDRF, SDRF, जम्मू और कश्मीर पुलिस और फौज समेत हंगामी सूरत हाल से निमटने वाली टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर की अहम सड़कें फिर से खोल दी गई हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में पानी सप्लाई की बहाली का काम जारी है। महकमे मौसमियात ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू और कश्मीर में दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके मद्देनजर जिला इंतजामिया ने लोगों को मोहतात रहने और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत दी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली।

हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरिकी इलाकों में भी अगले 2 दिन तक भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार जजायर में भी कल गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में आज हुई बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली। महकमे मौसमियात ने कल दिल्ली में आम तौर पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक कल राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 से 33 डिग्री जबकि कम से कम दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। लेबर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। कीर स्टारमर के इस्तीफा देने के बाद शाह चार्ल्स स्वयं ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 साल साबिक मेयर को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया। इससे कबल कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपना आखिरी खिताब किया जिसके बाद वो बाजाबता तौर पर अपना इस्तीफा देने के लिए बकिंगम पैलेस गए। उन्होंने कहा कि वो जनाब बर्नहैम को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उन्होंने लेबर पार्टी के नए लीडर को अपनी मुकम्मल हिमायत का अज़्म किया। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वामे मुत्तहदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीक़ेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, माहौलियात से मुतालिक मालियात, आलमी सतह पर जायजे और टेक्नोलॉजी की मसावियाना मुंतकली जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने न सिर्फ कौमी सतह पर अपने तयशुदा अहदाफ को मुकर्रर वक्त से पहले हासिल किया बल्कि आबोहवा की तब्दीली के बहरान से निमटने के लिए दीगर शोबों में भी अहम पेशरफ्त की है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि भारतीय टीम ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी और सिस्टेमेटिक्स के अलावा प्लांट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे मजामीन में गैर मामूली जानकारी फराहम की है जो कि एक अजीम कारनामा है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलों पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहरीन के साथ बातचीत की। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद 4 लोगों की जान चली गई जिससे 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक कल रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। कोई मेरे दिल से पूछे कि तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये शेर सुनते ही आपको चचा गालिब याद आए होंगे और आप सोच रहे होंगे आज के फनकार हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के किरदार को छोटे पर्दे पर जिन्होंने बखूबी निभाया था वो हैं आज के फनकार।
1: बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का।
0: रोबीला चेहरा, दमदार एक्टिंग, हर किरदार में खूब फबने वाले अदाकार हैं आज के फनकार। जी हाँ, आज के फनकार हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह।

नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। अभिनय के इस प्रतिष्ठित संस्थान से अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद वे रंगमंच और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों की सूची में समानांतर और मुख्य धारा की फिल्मों का अनूठा सम्मिलन देखने को मिलता है।

मेनस्ट्रीम सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत हुई 1980 में आई फिल्म हम पांच से। फिल्म भले ही कमर्शियल थी, लेकिन इसमें नसीर के अभिनय की गहराई पैरेलल सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर भी थे, लेकिन नसीर के दमदार अभिनय ने उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया।

1987 में गुलजार की इजाजत नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बनकर आई। एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत, इजाजत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर कमर्शियल एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया।

0: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैक्सिमम में भी नसीर की जोरदार एक्टिंग ने पब्लिक को खूब एंटरटेन किया है। वाकई नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स को ना तो देश की सरहदें बांध सकती हैं, ना उम्र की जंजीरें थाम सकती हैं। दोस्तों आपको याद होगा छोटे पर्दे पर मिर्जा गालिब नाम से एक धारावाहिक आता था जिसने किताबों में बंद मिर्जा गालिब को जिंदा कर दिया था। उस धारावाहिक ने छोटे पर्दे पर गालिब की ऐसी तस्वीर उभारी जो सिनेमाई कम हकीकत ज्यादा लगी थी और ये सब मुमकिन हुआ था उस चेहरे के बलबूते पर जिसका नाम है नसीरुद्दीन शाह।
1: ये दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम, ये दुनिया बाजीचा-ए-अतफाल है दुनिया मेरे आगे।

दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गालिब बनने की नसीर की तमन्ना उनके दिल में एक अधूरे ख्वाब की तरह अटकी हुई थी। सन 1988 में धारावाहिक बनाने से पहले गुलजार साहब गालिब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म में बतौर गालिब उनकी दिली इच्छा थी संजीव कुमार को लेने की। नसीर साहब ने इस बारे में बताते हुए कहा, मैंने गुलजार भाई को चिट्ठी लिखी और अपने फोटोग्राफ्स भेजे। मैंने लिखा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस फिल्म में तो आपको मुझे लेना चाहिए था। उन्हीं दिनों की बात है, अभिनेता संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ गया था और सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद गुलजार साहब के दिल में उस रोल के लिए अमिताभ के नाम का ख्याल आया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी और आखिरकार गालिब पर फिल्म बनाने का प्लान ही ठंडे बस्ते में पड़ गया। शायद उस वक्त गुलजार को भी नहीं मालूम होगा कि इस किरदार पर तो तकदीर ने किसी और का ही नाम लिख दिया है। कई साल बाद गुलजार साहब ने एक दिन नसीर को फोन लगाया। नसीर ने बताया, एक दिन मुझे गुलजार भाई का फोन आया कि सीरियल में काम करोगे। मैंने पूछा कौन सा सीरियल, तो उन्होंने बताया गालिब पर है। मैंने बिना कुछ सोचे फौरन हाँ कर दिया। ये नसीर की पहली ख्वाहिश थी जो देर से ही सही लेकिन पूरी जरूर हुई और उन्होंने गालिब के किरदार को यादगार बना दिया।

नसीर साहब की एक और दिली ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश थी गांधी के रोल को करने की। कहते हैं जब रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म बना रहे थे तो वो उसके लिए ऑडिशन भी देने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और रोल मिला बेन किंग्सले को। नसीर की तमन्ना अधूरी ही रह गई। सन 1982 में गांधी के रिलीज होने के 18 साल बाद कमल हासन ने बनाई थी फिल्म हे राम, जिसने नसीर साहब की दूसरी अधूरी तमन्ना को पूरा कर दिया। इस फिल्म में उन्हें गांधी का किरदार निभाने का मौका मिला। सधी हुई अदाकारी और बेजोड़ अंदाज से उन्होंने न केवल गांधी के किरदार में जान डाल दी, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर उनके टक्कर का कोई दूसरा एक्टर बॉलीवुड में नहीं है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ थी स्मिता पाटिल। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, पर फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने खूब सराहना की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हूँ, अर्धसत्य, कथा वगैरह वगैरह कई आर्ट फिल्में की। आइए सुनते हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों के कुछ गाने। ये फिल्म है इजाजत।

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 1987 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2003 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1969 में फिल्म स्पर्श, सन 1984 फिल्म पार, सन 2006 फिल्म इकबाल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला नसीरुद्दीन शाह को। कुछ

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1981 में आई फिल्म आक्रोश के लिए फिल्मफेयर मिला नसीरुद्दीन शाह को। सन 1982 फिल्म चक्र, सन 1984 में फिल्म मासूम के लिए मिला फिल्मफेयर पुरस्कार। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया।

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, आलेख और प्रस्तुति शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाई फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026

समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वह चार कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा यह अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो,
तर्क हो।

0: इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर एक।
2: प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया, उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है, और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी वो सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
0: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।

0: को प्रयास में दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तकिया लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे संसद में प्रश्नकाल। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा सुनने वाले तमाम दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दूजे के लिए इस फिल्म के कुछ गीतों को। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं ये पहला गीत लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। हम आपको बता दें इस फिल्म में गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म के गीतों को आपने सुना, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनूप जलोटा की। अब आइए सुनते हैं आशिकी, इस फिल्म से आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

आशिकी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत की बोल समीर के थे, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे का 26 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो। भारत के लिए गर्व के पल रहे।

0: प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
2: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments, while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m., 9 newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwadi News, Delhi.
1: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government at 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic